सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। आज दिन रविवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 3, तदनुसार 24 मई सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और

0: में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendra in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Mateen Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tawseef Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. US President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Mr. Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said that he had spoken with leaders from Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baqai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. In IPL cricket, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करते हैं चौलाई की खेती और इसके लाभ के संबंध में।
2: कार्यक्रम खेती की बातें सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम बातें करने वाले हैं चौलाई की खेती के बारे में, साथ ही इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में। किसान भाइयों, चौलाई की खेती एक अत्यधिक पौष्टिक और कम समय यानी कि 25 से 30 दिनों में तैयार होने वाली नकदी सब्जी फसल है, जिसे गर्म और नम मौसम में उगाया जाता है। इसके लिए जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मार्च से सितंबर तक उपयुक्त समय में प्रति हेक्टेयर लगभग 2 से 3 किलोग्राम बीज के साथ 45 सेंटीमीटर की कतारों में बुआई करके किसान 10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। चौलाई की खेती के कुछ प्रमुख बातें आइए जानते हैं। सबसे पहले तो है इसके उन्नत किस्में, जिसमें पूसा किरण, पूसा लाल चौलाई प्रमुख है। अगला है मिट्टी की तैयारी। रेतीली दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेत में 200 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद डालकर जुताई करें। इसके बाद मार्च अप्रैल गर्मी और जून जुलाई बरसात सबसे अच्छा समय माना जाता है इसके बुआई का। इसके बुआई की विधि में बीजों को बालू मिट्टी में मिलाकर कतारों जैसे 25-45 सेंटीमीटर दूरी में या छींटकर बुआई करें। बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें गहराई में ना बोएं। अगला है खाद और सिंचाई। 40 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और

0: 60 किलो पोटस प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। इसके अलावा नमी बनाए रखने के लिए 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अगला है कटाई और इसके उपज। बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली कटाई करें। 90 दिनों तक 5 से 6 बार कटाई मिल सकती है। इसमें कमाई देखा जाए तो यह फसल कम लागत में 3 से 4 क्विंटल एकड़ दाना या बंपर साग उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा देती है। चौलाई एक बहुत ही उत्तम औषधि भी है। औषधि के लिए चौलाई के सभी भागों का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि चौलाई की जड़, तने, पत्ते, फल और फूल का उपयोग करना फायदेमंद होता है। अधिकांश लोग चौलाई का सेवन साग के रूप में करते हैं। अनेकों लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि चौलाई बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप चौलाई का उपयोग कर दांतों के रोग, कंठ की बीमारियां, दस्त, पेचिस, क्यूलोरिया, घाव, रक्त विकार आदि में फायदा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन रोगों में चौलाई का उपयोग किया जा सकता है और कैसे चौलाई से लाभ लिया जा सकता है। सबसे पहले तो तांदुलीय चौलाई एक अत्यंत पौष्टिक साग है, जो प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन ए और सी और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। यह पाचन सुधारने, हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर में खून की कमी, एनीमिया दूर करने, वजन कम करने और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। इसकी तासीर गर्म होती है। चौलाई से मुख्य स्वास्थ्य लाभ और गुण के बारे में आइए बातें करते हैं। सबसे पहले तो एनीमिया में फायदेमंद। आयरन की प्रचुरता के कारण यह शरीर में खून बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में बहुत कारगर है। इसके बाद आता है हड्डियों की मजबूती। इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आता है पाचन और वजन प्रबंधन। इसमें हाई फाइबर के कारण यह पेट साफ रखती है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देती, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। अगला है हृदय स्वास्थ्य। इसके एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, इसमें विटामिन ए, बी, सी और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ ही हमारा ये खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा जोहार।
1: चौलाई की खेती और इसके लाभ, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है चिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम शांत रहो। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं, धैर्य में शक्ति है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिए जाते, कुछ उत्तर चुप रहकर भी दिए जाते हैं। याद रखो, जो खुद शांत है, उन्हें दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

देश को समर्पित ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, भक्ति में रचनाएं जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हम अपने ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। आइए सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। वंदना में आज के कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं रामचरितमानस।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमान और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत

भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी समाचार बुलेटिन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। सात बजकर 20 मिनट का समय होगा कार्यक्रम लोक गीत का। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा कुछ अंगिका लोक गीत, कलाकार होंगी नेहा सिंह। सात बजकर 35 मिनट का समय होता है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार होंगे लूपा मुद्रा मित्रा। आधुनिक जीवन शैली और हाइपरटेंशन, इस विषय पर हम भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे सुबह 7:50 पर। कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा। भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर पृथ्वीश सरकार। आठ बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आठ बजकर 45 मिनट का समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 9 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 9:05 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। सुरंजना में आज सुनिएगा शीर्षक गीत। श्रोताओं, आज रविवार है। रविवार के दिन आप सुनते हैं बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव, जो प्रसारित होगा सुबह 9:30 पर। दस बजे हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 का समय होगा विश्व दर्पण का। दस बजकर 20 मिनट से एक बार फिर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

11:05 पर सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। बारह बजकर पांच मिनट पर कार्यक्रम भावगीत का प्रसारण होगा। दिन में 12:30 पर सुनेगा महिलाओं का कार्यक्रम अंगना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सुबह के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आंखों ने कही, दिल ने सुनी, बात हो गई, फिर आज उनसे अपनी मुलाकात हो गई। आइए श्रोताओं, इब्राहिम अश्क की लिखी ये गजल सुनते हैं चंदन दास की आवाज में।

हंस के गम सहले मगर गम को मुकद्दर न बना, दिल को हल हाल में दिल रहने दे पत्थर न बना। आइए श्रोताओं, पयाम सईदी की लिखी ये गजल सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में।

चंदन दास की आवाज़ में गए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 और 11 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए। अंगिका लोकगीत का कलाकार हैं नेहा सिंह।

नेहा सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 7:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आनंद लेते हैं कुछ आधुनिक बांग्ला गान का। कलाकार हैं लोपा मुद्रा मित्रा।

लोपामुद्रा मित्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आधुनिक बांग्ला गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है आधुनिक जीवन शैली और हाइपरटेंशन। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर पृथ्वीश सरकार और इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। इस बारे में बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पृथ्वीश सरकार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि हाइपरटेंशन वास्तव में हम कहते किसे हैं।
1: एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो किसी बीमारी से नहीं भुगत रहा है और उसकी ब्लड प्रेशर यदि 140/80 अर्थात सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर हो तो हम उसे हाइपरटेंशन कहेंगे।
0: तो ये जो आजकल का रहन सहन है, क्या ये कारण बनता है हाइपरटेंशन का?
1: कि अभी जो हम लोग जो सर्वे चल रहा है ये हाइपरटेंशन के ऊपर ऑल इंडिया लेवल में भी सर्वे चल रहा है लेकिन कंक्रीट सर्वे हम लोग का अभी तक नहीं मिल रहा है। कारण हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ही ब्लड प्रेशर का कर पा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: सिर्फ बॉम्बे में ही देखा गया है जहाँ 3 ऑब्जर्वेशन किया गया है और उस पॉपुलेशन में देखा गया पूरे बॉम्बे में 39% लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी एक ऑब्जर्वेशन में।
0: अच्छा।
1: जब वे दोबारा या तिबारे वो लोग की जांच की तो वो नीचे उतर के 29% पे आ गया। बॉम्बे तो सब जानते हैं एक अर्बन पॉपुलेशन है। अब रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों को देखा गया है। ये देखा गया है रूरल पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ती जा रही है, हाई ब्लड प्रेशर की ऊंची बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या है, हम लोग के जीवन में ये किसका है, क्यों गड़बड़ हो रहा है। भारत में ये देखा गया है हाइपरटेंशन के 3 कारण से हो सकते हैं। एक, हम लोग के सोडियम नमक खाने की टेंडेंसी बहुत हाई है,
0: ज्यादा
1: नमक खाने के।
0: अच्छा।
1: ये नमक जो खाना है एटलीस्ट इसका अगर अफेक्ट हाइपरटेंसिव है तो आपको 3 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से खाना है और उससे लेस उससे कम के अनुपात में खाना है।
0: नहीं तो एक साधारण तौर पर हम कैसे नाप सकते हैं?
1: एक चम्मच 5 ग्राम के बराबर आता है।
0: अच्छा।
1: आपको टोटल 3 ग्राम लेना है।
0: अच्छा।
1: दूसरी चीज होती है ओबेसिटी, मोटापा। आज के ये में ओबेसिटी जो है वो हम लोग एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस एब्डोमिनल परिधि देखते हैं। महिलाओं में ये का 80 सेंटीमीटर ये परिधि देखेंगे और पुरुषों में ये 90 सेंटीमीटर हम लोग ज्यादा रखते हैं। ये अनुपात अगर बढ़ जाती है तो फिर ब्लड प्रेशर होने की चांसेस बढ़ जाती है। तब इसके चलते अब यूं होता है हम लोगों का खाने पीने की कोई गड़बड़ी है उसके चलते हम लोग यूजुअली यंगर एज ग्रुप में ही ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं। तो एज फैक्टर होता है, ये कहलाता है एज फैक्टर। एज क्या होता है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ते जाता है। एक 18 साल तक है, 25 साल के उम्र में मान लीजिए 10% ऑफ द पॉपुलेशन अगर अफेक्टेड है तो यही 80 साल के एज में करीब करीब 70% अफेक्टेड बढ़ते जाते हैं। तीसरा है मेल और फीमेल का रेशियो। मेल और फीमेल में बड़ी आश्चर्य है, पुरुष जब प्रोडक्टिव एज रेंज ग्रुप रहता है मतलब हम लोग 20 से 45 के एज में जो पुरुष महिला दोनों को रखते हैं इसमें पुरुष की तादाद ज्यादा होती है हाइपरटेंशन की, महिलाओं की कम। लेकिन ये उल्टा जब हो जाता है 45 पार कर जाती है या मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं वो महिलाएं पार कर जाते हैं उन लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलता है। पहला तो सोडियम हुआ, दूसरा आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी हुआ और तीसरा है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो हम लोग को ब्लड प्रेशर करता है।
0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आपने जाना हाइपरटेंशन के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पृथ्वीश सरकार। हाइपरटेंशन किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है इस बारे में हम जानेंगे स्वास्थ्य चर्चा के कल के अंक में। तो फिर कल इसी समय आकाशवाणी के इसी चैनल पर सुनना न भूलिएगा स्वास्थ्य चर्चा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आधुनिक जीवन शैली और हाइपरटेंशन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कर रहे थे डॉक्टर पृथ्वीश सरकार, इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब यही

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।
1: बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
4: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
3: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
9: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
3: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को करेंगे संबोधित। झारखंड समेत देश भर से 1.5 लाख से अधिक आदिवासी लोग हिस्सा लेंगे। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति के आंकड़ों में अंतर पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का किया तबादला। 3 जिलों के DC बदले। राज्य प्रशासनिक सेवा के दर्जनों पदाधिकारियों का भी हुआ स्थानांतरण। झारखंड के कई जिले हीट वेव की चपेट में। रांची में आज से तापमान में और वृद्धि के संकेत। अगले 4 से 5 दिन राहत मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह लाल किला मैदान में आज आयोजित होने वाले जनजाति सांस्कृतिक समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें कार्यक्रम में देश भर से 1,50,000 से अधिक आदिवासी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंपई सोरेन ने रवाना होने से पहले रांची एयरपोर्ट में कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा जिसमें देश भर के लाखों आदिवासी शामिल होंगे।
1: एक जनजाति सांस्कृतिक समागम होगा। इस आयोजन से कुछ राजनीतिक दल का MLA MP लोग नाखुश। क्या उन लोग का तकलीफ हो रहा है? आज जो आदिवासी भी जिस जगह तक वो लाके खड़ा कर दिया है, ये तो कांग्रेस पार्टी का देन है। देश आजाद होने के बाद एक आदिवासी का अलग कॉलम था। 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था उसको समाप्त। लेकिन आज देख रहे कांग्रेस अकबर में भी आया हो, आदिवासी के इस परंपरा को मिटाना चाहता है।
0: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद की सुनवाई के दौरान वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने आंकड़ों में अंतर पाए जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने सरकार से स्पष्ट जवाब देने को कहा कि नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर अलग अलग शपथ पत्रों में भिन्नता क्यों है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल धनबाद में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश की महिलाएं अवसर और सुरक्षित माहौल मिलने से निरंतर आगे बढ़ रही हैं।
2: केंद्र में महिलाएं हैं और महिला को आगे बढ़ाने के लिए चाहे पीएम मुद्रा की हम बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, और उसके साथ साथ महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके ताकि वो वर्क प्लेस पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करके काम कर सके, आज उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। पशुपति नाथ मिश्र को गढ़वा का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि सौरभ कुमार भुवनिया को देवघर का DC और जावेद हुसैन को खूंटी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार ने पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 12 IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। छवि रंजन को खेलकूद विभाग का निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दर्जनों अधिकारियों का भी तबादला किया है। वहीं राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय में देश भर में उप महानिदेशक, निदेशक और उप निदेशक स्तर के 55 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। DDG रविंद्र तुलसीदास मंदेकर को सेंट्रल जोन धनबाद का नया DDG नियुक्त किया गया है। निदेशक श्याम मिश्रा को कोडरमा भेजा गया, जबकि नागेश्वर राव हैदराबाद से धनबाद आएंगे। वहीं उप निदेशक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

0: हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में उत्पन्न संकट को लेकर उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के तनावपूर्ण हालात का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्य देशों की तुलना में कम है।
1: प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है एक एक लीटर दो दो लीटर पेट्रोल अगर हम सेव करते हैं तो लाखों डॉलर हम पेट्रोल सेव करते हैं। सबका होना चाहिए कि हम देश को देश हित में देश के विकास के चश्मे से देखें, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखें। अब जब तक ये मिडिल ईस्ट का जो गतिरोध नहीं समाप्त होता है तब तक तो है, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश से गैस आराम से मिल रही है, डीजल पेट्रोल कोई कमी नहीं।
0: झारखंड में जेटेड भाषा विवाद गहराता जा रहा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव जेटेड नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं, तो झामुमो इसके पक्ष में नहीं है।
2: वो भाषा बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा न बोली जाती है, न उन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, न कोई लिपि है, न कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो बहुत छोटे भूभाग में बहुत कम लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती होगी और अलग से भाषा नहीं है। दिरहोर जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं।
0: झारखंड के कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 4-5 दिन बाद तापमान में कमी आने की उम्मीद है। इधर आज राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ छिटपुट बारिश का भी अनुमान है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में कल खेले गए फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। पेश है खेल रिपोर्ट।
3: इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गोरिंदर वीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्वी शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी में सीएम हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश से जुड़ी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का दिया न्योता। दैनिक भास्कर की खबर है ट्रेजरी घोटाले की 4 एजेंसी कर रही है जांच, अब तक किसी ने नहीं दी रिपोर्ट। दैनिक जागरण ने राज्य में आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को करेंगे संबोधित। झारखंड समेत देश भर से 1.5 लाख से अधिक आदिवासी लोग हिस्सा लेंगे। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति के आंकड़ों में अंतर पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार ने 36 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, 3 जिलों के डीसी बदले, राज्य प्रशासनिक सेवा के दर्जनों पदाधिकारियों का भी हुआ स्थानांतरण। झारखंड के कई जिले हीट वेव की चपेट में, रांची में आज से तापमान में और वृद्धि के संकेत, अगले 4-5 दिन बाद राहत मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 24 मई सन 1955 को इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए इन्हीं के संगीत निर्देशन में बने गीतों को सुनते हैं।

दोस्तों, संगीतकार राजेश रोशन के पिता रोशनलाल नागरथ हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार थे। इनके पिता पंजाबी और माँ बंगाली परिवार से थीं। पिता की मौत के बाद इनके परिवार ने अपने नाम के आगे नागरथ की जगह रोशन लगाना शुरू कर दिया। पिता के अलावा इनके बड़े भाई फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन और भतीजे ऋतिक रोशन भी हिंदी सिनेमा में बड़ी शख्सियत हैं। 70 और 80 के दशक में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी हिंदी सिनेमा में पूरी शबाब पर थी, उस समय किसी भी नए संगीतकार को हिंदी सिनेमा में स्थापित होना आसान नहीं था। 1975 में K.S. सेतुमाधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जूली ने राजेश को हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस फिल्म के संगीत की खूब तारीफ हुई और राजेश रोशन को इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के खिताब से नवाजा गया। ये पुरस्कार राजेश रोशन को एक बार फिर साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है के लिए मिला और श्रोताओं, उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। आइए इन्हीं के संगीत निर्देशन में बना ये गीत सुनते हैं, जिसे फिल्म मिस्टर नटवरलाल से हमने लिया है।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज जिन फिल्मों के गाने आपने सुने वो थे काला पत्थर और मिस्टर नटवरलाल, आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की। और अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई

0: विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल पर ही पासी के एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशन तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरविंदर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। समाचार समाप्त हुए।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 और 40 सेकंड हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
5: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
6: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। श्रोताओं, आज रविवार है। रविवार विशेष सुरंजना में आज आप सुनते हैं शीर्षक गीत। श्रोताओं, किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है। हम किसी से दूर भी क्यों ना हो जाएं, पर उसके चेहरे की छवि आंखों में बसी होती है। इसी चेहरे शब्द पर आज हम शीर्षक गीत के साथ उपस्थित हैं। स्वीकार करें अपनी दोस्त पूनम श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तेरा चेहरा देखकर दिल सुकून पाता है, तेरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। जमी से फलक तक बस तू दिखे, दिल रब से हर वक्त यही दुआ करता है।

गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, और तब जब वो चेहरा सामने होता है तो सच खुशी सी छा जाती है।

0: दोस्तों, आज कार्यक्रम सुरंजना में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो थे कभी कभी, गरम मसाला, वक्त और दिलवाले। आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सोनू निगम, आशा भोसले और कुमार सानू की। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी, मयूर पुरी और समीर ने। संगीत था खयाम, प्रीतम, रवि और नदीम शवर का। और अब इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सुरंजना यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत। और पल्लव के आज के इस अंक के साथ मैं हमेशा की तरह आपकी सीमा दीदी। बच्चों, आप हर रविवार इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पल्लव। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है इस समय आप उस पर काम कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं। बच्चों का नया दोस्त योग, योग से बढ़ेगा बच्चों का तन मन। इस विषय पर आज आप ऋतु रुंगटा से विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें। जैसा कि बच्चों, अभी भीषण गर्मी से हम सभी बेहाल हैं, इस समय थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उच्च तापमान और अत्यधिक गर्मी से आप बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इससे डिहाइड्रेशन, ऊष्मा थकावट, ऐंठन और हीट स्ट्रोक हो सकता है। तेज गर्मी से हर कोई बेचैनी महसूस कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज भीषण गर्मी आम होती जा रही है। जब सुबह से ही गर्मी काफी बढ़ जाए तो घर के अंदर ही रहना जरूरी है। आप घर पर रहकर ही कोई क्रिएटिव वर्क जैसे पेंटिंग, गायन, शिल्पकारी, पढ़ना या इंडोर गेम खेल सकते हैं, या फिर आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बच्चों, ऐसे में हमें थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा पानी पीते रहना चाहिए। आप फलों के जूस, ठंडी लस्सी, नींबू पानी या फिर शरबत पी सकते हैं। घर से बाहर अगर जाना जरूरी हो जाए तो साथ में टोपी, छाता जरूर रखें। पानी का बोतल भी साथ अवश्य ले जाएं। हल्के और सूती कपड़े इस मौसम में हमें ठंडा रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वे गहरे रंगों की तुलना में कम गर्मी सोखते हैं। ढीले ढाले कपड़े पहनने से उनमें हवा का प्रवाह तो होता ही है, साथ ही सीधी धूप से बचाव भी होता है। कड़ी धूप में बच्चों कभी भी बाहर खेलना नहीं चाहिए, आपको लू लग सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए दोपहर में हमें घर पर ही आराम करना चाहिए। इस मौसम में हमें सुबह शाम दो बार ठंडे पानी से स्नान करना अच्छा रहता है। बच्चों, लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के बाद हमें थकान महसूस हो सकती है, सरदर्द, बुखार या बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है, उल्टी, कई घंटों तक पेशाब न आना, मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन, सामान्य से अधिक तेज या गहरी सांस लेना, ये लक्षण दिखलाई पड़े तो हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बच्चों, स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना, स्वच्छता का पालन, आराम और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना गर्मी में बहुत आवश्यक है। बच्चे और बुजुर्गों को लू का खतरा सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनका शरीर तापमान को जल्दी नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए बच्चों, गर्मी के मौसम में आपका स्वास्थ्य काफी हद तक आपकी दैनिक आदतों पर निर्भर करता है। दिनचर्या, स्वच्छता या खानपान में थोड़ी सी चूक संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। इसलिए अभी बताई गई बातों पर आप ध्यान देंगे तो स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। इस भीषण गर्मी में आप सावधानी किस प्रकार बरत सकते हैं, इस बारे में अभी हम बातें कर रहे थे। और अब आइए सुने ये गीत।

0: बच्चों का नया दोस्त योग, योग से बढ़ेगा बच्चों का तन मन। आइए इसी विषय पर रितु रुंगटा से ली गई ये भेंट वार्ता सुनते हैं। उनसे बातचीत कर रही हैं विजया दीदी।
1: तन स्वस्थ तो मन मस्त। बच्चों, क्या कभी सोचा है कि हम कैसे ज्यादा एक्टिव और खुश रह सकते हैं, कैसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं और स्पोर्ट्स में भी बेहतर कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही मजेदार और आसान उपाय है योग। पल्लव कार्यक्रम में विजया दीदी का प्यार भरा नमस्कार। योग सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है बच्चों। ये न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज और शांत रखता है। आज पल्लव कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रितु रुंगटा जी, जो योग विशेषज्ञ हैं, हेल्थ और वेलनेस कोच भी हैं। ये हमें बताएंगी कि योग से हमें कितने फायदे होते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं रितु रुंगटा जी का।
2: धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया।
1: रितु जी, बच्चों के लिए योग कितना आवश्यक है और ये उनके विकास में कैसे सहायक होता है?
2: बच्चों पर तो ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रेशर आजकल बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा है, कंपटीशन का इतना ज्यादा प्रेशर है कि कुछ बनना है। कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चों पर वो प्रेशर दे देते हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो बनना है, तो बच्चों पे इतना प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर को वो हैंडल बहुत बार नहीं कर पाते हैं और बहुत तरह के, देखिए, अटेम्प्ट्स भी कर लेते हैं। हमने जो आजकल सुनते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, बच्चे बहुत मारपीट करते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपने आप को बहुत कमजोर करते जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन है, ये करना है, वो करना, इतना प्रेशर बढ़ रहा है। अब उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? तो मैं तो ये कहूंगी कि हर स्कूल में जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक सब्जेक्ट होता है, उसी तरह से योगा का एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए हर स्कूल में, ताकि बच्चा दिन भर का आधा घंटा, ऐसे तो बच्चे देने वाले नहीं है कि हमें योग करना है, उन्हें योग सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन योग के माध्यम से अगर बचपन से ही वो नींव उन्हें दे दें हम, आप एक मजबूत निर्माण कर पाएंगे। जो बच्चे छोटी छोटी बात पे आज लड़ते झगड़ते हैं, कहते हैं ना वो जो बुली करते हैं एक दूसरे का, खींचातानी होती है, जो वो सारी चीजें तभी होती है जब बच्चों के अंदर में बहुत गुस्सा और तनाव भरा है। तो योग तो बहुत जरूरी है बच्चों को दिन भर में। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बचपन से ही वो सीख दें, ताकि थोड़ी देर बैठ के उन्हें बैठा कर 15 से 20 मिनट वो उन्हें कुछ सिखाएं, समझाएं, या फिर खुद जब माँ बाप इस चीज को फॉलो करते हैं ना, पेरेंट्स फॉलो करते हैं, तो बच्चे देख देख के धीरे धीरे उन्हें भी फॉलो करने लगते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है बच्चों की जिंदगी में।
1: जी, आजकल बच्चों में एकाग्रता की कमी और डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग बढ़ रहा है, योग इस समस्या को कैसे दूर कर सकता है?
2: बच्चे इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हर समय सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चे नहीं देखते। जो उनके देखने की चीज नहीं है वो भी वो देखते हैं, तो उनके विचार, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी एकदम अलग ही लेवल की रहती है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता क्योंकि उनका दिमाग बार बार सोशल मीडिया में जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ही चल रहा है उनका। अब इस कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन है, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन अगर बच्चे करते हैं, फोकस कर पाते हैं चीजों को। तो हर बच्चे को त्राटका करना चाहिए, एक मोमबत्ती को अपने आई लेवल पे चालू करके रखना चाहिए और उसकी जलती हुई लौ को अगर आप 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यूस देखते हैं, आप पूरा फोकस कर पाते हैं, जिससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। एक तो ये है, त्राटका करना चाहिए बच्चों को, जो बहुत जरूरी है कंसंट्रेशन के लिए। और दूसरा, जो बैलेंसिंग आसनास होते हैं ना, जिसमें शरीर को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को बैलेंस करने के लिए उनको अपने मन को वहीं पर रखना पड़ता है, तो वो कंसंट्रेटिंग आसनास, बैलेंसिंग आसनास जितने हैं, कोशिश

0: करना चाहिए बच्चों को वो करवाने का, जितने बैलेंसिंग आसनाज हैं और ये त्राटका और मेडिटेशन, ये उनका कंसंट्रेशन बहुत हद तक इम्प्रूव करता है, जिससे वो पढ़ाई के समय पे फोकस रहेंगे और जब पढ़ाई पे मन लगेगा तो दूसरी चीजों से मन हटने लगेगा। अभी सोशल मीडिया में इतना मन लग रहा है कि पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेटिंग और बैलेंसिंग आसनाज जब वो करने लगेंगे, देखिए जहाँ उनके पहले 10 नंबर आते थे वहाँ कहाँ 50 नंबर आने लग जाएंगे।
1: रितु जी, कौन से योगासन छोटे बच्चों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद माने जाते हैं?
0: बच्चों के लिए सबसे अच्छा है ताड़ासन, जो कि ना केवल लंबाई बढ़ाता है, कहते हैं ना हाइट भी जरूरी है बच्चों की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। ताड़ासन बहुत जरूरी है, जो पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। जब पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है तो पूरी ब्लड कैपिलरी स्ट्रेच होती है, तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। और जहाँ ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, प्राणा का संचार अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन आपके हर शरीर के हर एक अंग तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी। तो ताड़ासन है, यष्टिकासन है, वृक्षासन है, वॉरियर पोस्चर है, वीरभद्रासन है, ये कुछ पोस्चर्स हैं जिसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है शरीर को। तो जहाँ वो बैलेंस करेंगे उनके लिए, मन के लिए भी बहुत अच्छा है और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोई खास योग दिनचर्या होनी चाहिए?
0: स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अपने आप में दिन भर इतना बिजी होता है, स्कूल जाना, फिर वहाँ से ट्यूशंस जाना, ये कोचिंग जाना, कि उनके पास टाइम बहुत होता ही नहीं है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है उनके लिए। अब उसमें हम कैसे मैनेज करें? तो दिन की शुरुआत जब बच्चे सो के उठते हैं उस समय उनसे 3 लंबी गहरी सांस के साथ ओंकार का उच्चारण सुबह की शुरुआत, और रात में जब वो सोने जाते हैं तब वापस से 3 ओंकार का उच्चारण और अपनी हेड टैपिंग, दोनों हाथ की ढीली मुट्ठी बना के वो अपने पूरे सिर की जेंटल टैपिंग करेंगे। कहते हैं ना, सिर को हल्के हल्के हाथों से मुट्ठी से थपथपाना और साथ में हमिंग बजिंग साउंड करना, भ्रमर की आवाज, हेड टैपिंग विद हमिंग साउंड। जब ये चीज करते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, माइंड शार्प होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये दो चीज तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए देखिए, अगर आप दिन भर में आप बच्चों को बहुत फोर्स तो नहीं कर सकते हो कि ये करना है वो करना है, योगा के लिए भी समय निकालना है, लेकिन उनको आप किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में डाल के रखें, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, जिसमें वो फिजिकली एक्टिव रहें, तब आराम से वो अपने आप को फिजिकली फिट रखते हुए, मेंटली हेल्दी रखते हुए अपनी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
1: रितु जी, अक्सर बच्चे बहुत अधिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और एक ही जगह बैठना कठिन लगता है, ऐसे में योग को उनकी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है?
0: जो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, है ना, बैठते नहीं है, इधर उधर बदमाशी करना, इतनी एनर्जी होती है उनके में कि वो एनर्जी वो कहाँ खर्च करें उन्हें समझ में नहीं आता, तो वो बदमाशी, वो 10 तरह की, कहते ना, परेशान करने वाली चीजें भी करने लग जाते हैं, स्थिर नहीं होता है मन। तो ऐसे बच्चों की एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे फोकस करवाना पड़ेगा। अब वो एनर्जी को आप किस अच्छी जगह पे लगाएं, किस तरह से उस एनर्जी को काम में लेकर आए, तो योग में भी बच्चों के जो किड्स योगा होता है उसमें ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज करवाते हैं हम, जिसमें उनकी एनर्जी उनको यूज करनी पड़ती है। जब ग्रुप में बच्चे होते हैं और आप उनको कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी भी यूज करते हैं और ब्रेन भी यूज करते हैं, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत होता है और उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो पूरी एक सही डायरेक्शन में फोकस होती है। तो कभी भी ऐसा अगर कोई बच्चा है जो बहुत हाइपर एक्टिव है, आप अपने आसपास के एरिया में पता कीजिए, जैसे होता है ना बहुत सारे योग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों के चलते हैं क्लासेस और बहुत एक्टिविटीज करवाई जाती है, वो एक्टिविटी वाली क्लासेस में उनको डलवाइए। उन बच्चों को अगर आप बोलेंगे कि आप बैठ के ध्यान करो या ये आसना करो, वो बच्चे कभी नहीं करने वाले हैं। उनको एक्टिविटी वाली क्लासेस में डलवाइए, देखिए वो कैसे अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे।
1: क्या योग से बच्चों की इम्यूनिटी और शारीरिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है?
0: योगा का तो काम ही है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। देखिए, हमारे शरीर में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड है और दूसरा है लिम्फैटिक फ्लूइड। ब्लड है, रक्त बहता है हमारे शरीर में, ये पूरी दुनिया को पता है। एक लिम्फैटिक फ्लूइड होता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जितना आप लेग मूवमेंट करेंगे, काफ मसल होती है हमारे पैर में, जो हमारे घुटने के नीचे की जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स होती है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो बच्चे को जब आप किसी एक्टिविटी एक्टिविटी में लगाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी किसी स्पोर्ट्स में लगाते हैं, तब उनके पैरों का मूवमेंट इतना अच्छा स्ट्रांग होता है ना कि धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग होने लगती है और इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो योगा में भी बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जिसको वो करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे बहुत वीक और कमजोर हो जाते हैं, मौसम चेंज हुआ नहीं, सर्दी पकड़ लिया, बुखार हो गया, तो ऐसे बच्चों को भी आप जरूर योगा प्राणायाम

0: करवाएं, जिससे योगा प्राणायाम से तो बिल्कुल जो हमारा इम्यूनिटी का ग्लैंड है वो स्ट्रांग होता है, और जब वो स्ट्रांग होने लगेगा किसी भी तरह के आसनाज हैं, जो बच्चों के लिए, देखिए बच्चे हर चीज नहीं करना चाहते हैं, बच्चों के लिए ना अलग तरह से हम बिल्कुल फन फील्ड वे में उनसे आसनाज करवाते हैं। अगर आप बच्चों को शांत वे में बैठ के बोलेंगे आप ये कर लो, वो नहीं करना चाहेंगे, उन्हें बहुत इंटरैक्ट करते हुए एक्टिविटी के थ्रू उनको बहुत सारे आसनाज करवाने होंगे, तब जाके वो बच्चे करेंगे और उससे 100% उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपको फर्क मिलेगा।
1: रितु जी, छोटे बच्चों को योग की ओर आकर्षित करने के लिए माता पिता और शिक्षक क्या कर सकते हैं?
0: स्कूल में हफ्ते में एक दिन कम से कम सारे बच्चों को इकट्ठे करके कॉम्पिटिशन जैसे करवाएं कि कौन 10 मिनट तक चुपचाप बैठ सकता है, कौन 5 मिनट तक शांत बैठ सकता है, कौन बिल्कुल एक पॉइंट में लगातार बैठ के कितनी देर तक देख सकता है, गेज करना जो कहते हैं। जब इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों में, कोई भी टीचर्स है या पेरेंट्स घर पे ही अपने बच्चों को बोलेंगे ना कि अच्छा देखो तो तुम एक पैर में कितने सेकंड तक खड़े हो पा रहे हो, या ये बॉल मतलब ऊपर फेंको, नीचे मत गिरने देना, देखो कैसे कर पा रहे हो, अच्छा चलो 5 मिनट तक शांत होके बैठ के दिखाओ, शरीर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, तो ये मैंने क्या किया, ये बिल्कुल हंसी मजाक में, खेल खेल में, आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरह से बच्चों को स्थिरता दे रहे हो, योग की तरफ आकर्षित कर रहे हो एक्टिविटी करवाते हुए। बच्चों को हमेशा एक्टिविटी के थ्रू ही आप एंगेज कर सकते हैं। तो यही काम स्कूल में टीचर्स भी पूरे ग्रुप के साथ करना वो करवा सकते हैं, घर पे भी पेरेंट्स छोटी छोटी एक्टिविटीज पे उनको इन्वॉल्व करके कि चलो दीवार के सहारे खड़े होना है, एक पैर को ऊपर करके खड़े हो, देखो कितनी देर खड़े होते हो, उसको अगर आप बोलोगे चलो योगा करना है और तुम एक पैर रख के खड़े होके करो, वो बिल्कुल नहीं करेगा। कॉम्पिटिशन वे में अगर आप उसको देंगे वो जरूर करेगा और देखिए उसको इम्प्रूवमेंट मिलने लग जाएगा।
1: एक खास सवाल, क्या किसी विशेष उम्र से बच्चों को योग सिखाना शुरू करना चाहिए या किसी भी उम्र में इसकी शुरुआत की जा सकती है?
0: योग की शुरुआत तो अगर बच्चा 1.5 साल का 2 साल का जब से चलने लगा है तब से हो जाए तो बहुत ही अच्छा। योग मतलब जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉपर पोस्चर सिखाने हैं हमको कि तुम ये आसना करो, नहीं। बचपन से जब बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को कुछ करता हुआ देखता है तो उसके बीज उसके मन में, उसके संस्कार में अपने आप पड़ने लगते हैं। तो 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे जो बैठते हैं शांत, ओंकार उच्चारण तो बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, उससे उनका मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। और मैंने तो ऐसे भी बच्चों को सिखाया है जो 6 साल के बच्चे से शुरू हुआ था और आज इतना अच्छा योगा, बहुत आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उनकी कि वो सारे तरह के आसनास कर पाते हैं। तो योग की तो कोई उम्र है ही नहीं, कोई उम्र सीमा नहीं है, मन में लगन होनी चाहिए और चाह होनी चाहिए।
1: रितु जी, क्या बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं? यदि हाँ तो उनके लिए सबसे आसान ध्यान तकनीक कौन सी हो सकती है?
0: ध्यान में बैठाना बच्चों को, अगर आप बोलेंगे कि आंख बंद करके 1 घंटा बैठो, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो उन्हें आप ध्यान में जब बैठाना है बस या तो ये कहिए उनको कि आंख बंद कीजिए और 100 से 1 की गिनती को उल्टा लेकर आइए आंखें बंद करते हुए। तो जब वो काउंटिंग, बैक काउंटिंग शुरू करेंगे, वो बैक काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से मेडिटेशन होता जा रहा है, उनका ध्यान होता जा रहा है कि उनको पूरा मन में वापस पूरी स्थिरता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ उनको 100 से लेके 1 तक वापस आना है। तो उनका मन जो इधर उधर भाग रहा था वो भागना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जब 1 to 100 करने के लिए बोलेंगे ना, वो इतना रटा हुआ है कि वो एक लय में बोल देंगे, उन्हें मतलब बहुत फोकस नहीं करना पड़ेगा। 100 से 1 में आने के लिए उनको पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैक काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, मैंने बताया कि किसी दीपक को या किसी कैंडल को सामने में जला के छोड़ दीजिए और बच्चे को बोलिए 5 मिनट तक तुम इसे देखो, इससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ध्यान करने की ये सबसे आसान तकनीक है। और ध्यान करने की एक और आसान तकनीक है कि बच्चों को ये कहिए कि देखो तो तुम्हारी सांस कितनी अंदर तक गई शरीर के और कितनी बाहर गई। जब हम सांस भरते हैं तो वो सांस आप देखेंगे कि हम जो बेसिक सांस भरते हैं नाक से केवल गले से छाती के 1/3 हिस्से तक जाती है और फिर वापस चले जाती है बाहर। आप बच्चे को ये बोलिए कि तुम्हारी सांस को तुम नाक से, गले से, छाती से पूरा नीचे नाभि तक लेकर जाओ और फिर उसके बाद उसको बाहर छोड़ो। ऐसा तुम 10 बार करो, देखिए वो इतना अगर करना सीख जाएगा ना, वो धीरे धीरे ध्यान में जाना सीख जाएगा।
1: ये जरूरी सवाल कि कुछ बच्चे जल्दी गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं, योग उनके मानसिक संतुलन को सुधारने में कैसे मदद कर सकता है?
0: जो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, उनकी की एनर्जी इतनी नेगेटिव है अंदर में, ऐसे तो ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चों की एनर्जी नेगेटिव होती है, बच्चे बहुत प्योर होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बहुत बार घर का माहौल है या बाहर का माहौल है, दोस्त है, ऐसे कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है कि बच्चे अंदर से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन की भावना इतनी होती है कि अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं किसी चीज में तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं अच्छा देखो उसने तो ऐसा किया तुम नहीं कर पाए, ये सारी चीजें उन्हें और एग्रेसिव बना देती है। तो उस एग्रेसिवनेस को निकालने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें थोड़ा पैम्पर करें। बच्चा चाहे अगर गुस्सा करता भी है तो आप उसके ऊपर वापस से गुस्सा ना करें। कोई बच्चा अगर तंग कर रहा है और आप बार बार उससे उस बात को कहेंगे कि ये तो ऐसा ही करता है, इसका तो नेचर ही ऐसा है, उसका नेचर धीरे धीरे ऐसा बनते जाता है। किसी भी बच्चे को हैंडल करना, अगर प्यार से हम हैंडल करें, अगर वो 10 बार गुस्सा कर रहा है और अगर आप 5 बार उसके ऊपर आप गुस्सा करते हैं, वो और उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके गुस्से को, उसके एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए आपको बहुत प्यार से उसको हैंडल करना पड़ेगा। जितना आप प्यार से उसको हैंडल करते जाएंगे, धीरे धीरे धीरे धीरे देखिए उसका धीरे धीरे एग्रेसिवनेस भी कम होता जाएगा और फिर आप उसको अपनी बातें समझा पाओगे। तो उसके लिए पहले आपको खुद को पेशेंस होना, वो आना चाहिए पेरेंट्स लोगों में, तो वो तभी आएगा ना जब आप खुद अच्छी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। आपको देख के आपका बच्चा अपने आप सीखेगा। अगर आप घर का माहौल बिल्कुल ऐसा रखें कि आप घर पे चिल्ला कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो बच्चा अपने आप सीखेगा। तो जैसा आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आप खुद बिहेव कीजिए।
1: जी, क्या योग से बच्चों की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है? अगर हाँ तो कौन से योगासन उनकी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं?
0: जितने भी अगर देखें सोशल मीडिया में भी जिन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके होते हैं, अगर उनकी डेली रूटीन को आप रीड करेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी रूटीन में फिजिकल फिटनेस के लिए जरूर वो समय निकालते हैं। जब आप फिजिकली फिट रहते हैं, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी को अपना रहे हो, योग हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, किसी भी रूप में अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना। जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपनी एनर्जी को आप किसी अच्छी चीज में फोकस करके लगा के रखे हैं, तो अपने आप आपकी जो पढ़ाई में है वो ग्रोथ दिखने लग जाती है। तो योगा का समय निकालना थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए अगर बच्चों के रूटीन में कंपल्शन कर दिया जाए कि करना है, स्कूल में अगर दिन की शुरुआत उनके स्कूल की पढ़ाई की शुरुआत 15 मिनट की थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ करवाए, थोड़ा उछल कूद के साथ करवाए, थोड़ा ओम चैंटिंग के साथ करवाए, 5-10 अच्छा चलो 15 लंबी गहरी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे। हर क्लास के पहले उनको बच्चों को ये कहें 10 से 15 लंबी गहरी सांस भरें, चलो फिर उसके बाद हम ये शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी एकाग्रता बढ़ने लग जाती है और फिर वो हर चीज में बहुत अच्छे से कर पाते हैं।
1: अंत में आप बच्चों और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें?
0: हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, मेरा बच्चा बड़ा हो कि ये बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे? हमारा सबका फोकस होता है कि वो अपनी जिंदगी में ये बने वो बने। पेरेंट्स का फोकस ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छे संस्कार के साथ रहे। जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा उसके पास, मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार रहेंगे, तो वो अपने आप हर चीज कर पाएगा। और दिन में योग तो बहुत हद तक हेल्प करता ही है मन को शांत रखने में। योगा से आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने 10 मिनट भी बैठ के अपनी सांसों पर ध्यान दिया या 5 आसनास भी कर लिए, आप अपनी एनर्जी को पूरा शिफ्ट कर लेते हो पॉजिटिव एनर्जी में। जो हर रोज नेगेटिव एनर्जी बन रही है हमारे अंदर में, अगर हम उसकी सफाई नहीं करते हैं अंदर से, तो वो एनर्जी इतनी इकट्ठी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है कि आपको गुस्सा आना ही है, आप चिड़चिड़ाओगे, आप कोई किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लोगे ही नहीं। तो केवल रोज की रूटीन में 5 मिनट का ध्यान और 4-5 आसना अपने बच्चों के साथ बैठ के करवाइए कि स्कूल जाने के पहले 15 मिनट करना है, या स्कूल से आके 15 मिनट करना है, या फिर रात में सोने के पहले 15 मिनट करना है। 15 मिनट, ज्यादा देर बच्चे नहीं करते। यही 15 मिनट की रूटीन दिन भर की उन्हें 23 घंटे 45 मिनट अच्छा रखेगी, शांत रखेगी और अच्छे संस्कार के बीज पड़ेंगे उनके ऊपर। तो हर माँ बाप और हर बच्चे के लिए सबसे जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य होना। देखिए, हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं हम कि बहुत बड़े इंसान बने, लेकिन किसी भी परिवार के लिए उस घर के सदस्य का होना मायने रखता है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है उसका होना, उसका स्वस्थ होना। परिवार में अगर कोई एक बीमार है तो पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है, परेशान रहता है। तब उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी में हमें बड़ा घर चाहिए कि मेरा बच्चा बड़ा हो कि ये बने, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन है? प्रेशर है वो जो पेरेंट्स देते हैं, प्रेशर है जो पढ़ाई का पड़ रहा है। तो इतना प्रेशर मत दीजिए। मार्क्स से आपके बच्चे की जिंदगी नहीं डिसाइड होगी, संस्कार से डिसाइड होगी उसकी जिंदगी।
1: जी हाँ,
0: वो हर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहा है उस पे डिसाइड होगी उसकी जिंदगी। ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए जो किसी एक फेलियर के कारण अपनी जिंदगी को ही फेलियर मान ले। हमें ऐसे बच्चे को डेवलपमेंट देना है कि एक फेलियर के बाद उसके मन में ये आए कि कोई बात नहीं, आगे मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हमें देना है बच्चों को। तो उसके लिए माँ बाप का रोल तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि माँ बाप जितने पॉजिटिव रहेंगे बच्चों पे कम प्रेशर डालेंगे, मार्क्स का कम प्रेशर डालेंगे, आप देखिए आपका बच्चा उतना ग्रो करेगा। उसके लिए घर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना जरूरी है, और उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी जरूरी है, और आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने के लिए थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी है।
1: तो बच्चों, आज हमने जाना कि योग सिर्फ एक कसरत नहीं, बल्कि ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इससे हमारी याददाश्त तेज होती है, हमारा मन शांत रहता है, और हम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ऋतु जी, आपने हमें बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से योग के फायदों के बारे में बताया। हमें विश्वास है कि हमारे छोटे श्रोता अब योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे।
0: आपका भी धन्यवाद कि आप बच्चों के लिए इतना कुछ सोच के इतनी कुछ बातें उन तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद करती हूं कि कुछ बच्चे के माता पिता ये जरूर सुनेंगे और उसमें से कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स वो जरूर अपने बच्चों की लाइफ में ऐड करवाएंगे। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। फिर
1: तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हर दिन थोड़ा थोड़ा योग जरूर करें। विजया दीदी को आज्ञा दीजिए, प्यार भरा नमस्कार।
2: बच्चों का नया दोस्त योग, योग से बढ़ेगा बच्चों का तन मन, इसी विषय पर ऋतु रुंगटा अभी हमें विस्तार से बता रही थी बच्चों, और उनसे बातचीत कर रही थी विजया दीदी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता एस्थर चैंपी, और इसके साथ ही बच्चों आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव अभी आप सुन रहे थे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Akashwani, the news read by Saira Mujtaba. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
1: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendra in West Bengal from the existing 117 to 469. The government has published draft rules under the VBG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. In Maharashtra, a 1500-page charge sheet has been filed by the State Special Investigation Team before a court in Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Mateen Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tawseef Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said that he has spoken with leaders from Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. India Meteorological Department has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha. Similar weather conditions are also likely in places over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh. According to the Met Department, coastal Andhra Pradesh, Kanchetic West Bengal and Odisha are expected to experience hot and humid weather during the day. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Places over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Kerala, Mahi, Konkan, Goa, Lakshadweep and parts of Northeast India are expected to witness thunderstorms and lightning today. And on to sports now. Gurinderveer Singh has clinched the gold in the men's 100-meter event at the 2026 Athletics Federation Cup in Ranchi with a new national record timing of 10.09 seconds. Animesh Kujur secured the silver while Pranav Pramod took the bronze. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: भारत ने पेक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुँचाना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पुलिस जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि अधिकारियों की जवाबी फायरिंग में घायल होने के बाद संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने बताया है कि 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति ने सुरक्षा जाँच चौकी पर गोलीबारी की। संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। घटना में एक नागरिक भी घायल हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उसे संदिग्ध की गोली लगी या अधिकारियों की फायरिंग से चोट पहुंची। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कांगो में इबोला प्रकोप के कारण अब तक 204 लोगों की मौत हो गई है। अफ्रीकी संघ के स्वास्थ्य एजेंसी ने कल चेतावनी दी थी कि कांगो और युगांडा के अलावा अफ्रीका के अन्य देशों में भी इबोला वायरस फैलने का खतरा है। रेड क्रॉस ने बताया है कि कांगो में उनके 3 स्वयंसेवकों की भी इस वायरस के कारण मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार संधि NPT की समीक्षा के लिए आयोजित 4 सप्ताह का सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। सम्मेलन के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में वियतनाम के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डो युंग वियत ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए संधि के भविष्य प्रभावशीलता को लेकर चिंता जताई। श्री वियत ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि सम्मेलन किसी अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी सम्मेलन में सहमति नहीं बनने पर निराशा व्यक्त की। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार देशों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल से 22 मई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस बीच रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमरीका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका में सांसद और आवर्जन अधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने ही देश से आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। वेनेजुएला की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना मचाडो ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। नोबेल विजेता मचाडो ने ये बात कल पैनामा सिटी में वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के दौरान की। मचाडो दिसंबर से निर्वासन में रह रही हैं। वेनेजुएला में 11 महीने तक छिपकर रहने के बाद नॉर्वे गई थी जहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव कब होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सराहना की है। रोड्रिगेज ने ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल कीमतों के बीच वेनेजुएला के तेल उद्योगों को अमरीकी निवेश के लिए खोल दिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए मैदान में उतरेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त और 2024 के फाइनलिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव और सातवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्स की भी आज चुनौती होगी। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कोको ग्राफ और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी आयरना सैबालेंका अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी होगी। एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जेमोनिलर की जोड़ी की भी चुनौती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम आज से पेरिस में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विश्व दर्पण, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:20:30 हुए हैं। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में। Thank you.

0: सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो डॉक्टर।
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: कुमार सानू की आवाज़ में अंदाज तेरा मस्ताना इस फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल समीर ने लिखे थे और धुन बनाई थी आनंद मिलन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
8: जी,
7: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
8: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
7: पर ये होगा कैसे?
8: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
7: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
8: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
7: बस
8: बस
7: समझ गया।
8: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में।

फाइटर फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज़ें थी विशाल ददलानी, शेखर रवजियानी और बी प्राग की। गीत के बोल कुमार के थे और संगीत था विशाल शेखर का। आइए श्रोताओं अगला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम लापता लेडी।

लापता लेडी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज़ थी। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था और संगीत पर किया था राम संपत्नी। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में सैनिक फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। अगला गीत सुनते हैं जावेद अली और हंसिका अय्यर की आवाज़ों में, इट्स माय लाइफ फिल्म का ये गीत है।

जावेद अली और हंसिका अय्यर की आवाज़ें थीं। गीत के बोल नीलेश मिश्रा ने लिखे थे, संगीत पर किया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम था इट्स माई लाइफ। आइए श्रोताओं, चलते चलते कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं गदर 2 फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा और साथियों ने।

0: गदर टू फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी नीति मोहन और विशाल मिश्रा की। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था मिथुन ने। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: दिन की 11
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य

साथ ही के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमरीका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और चिलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। उधर महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन है। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: could.
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ आज मैं रंजना, श्रोताओं नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। किसी इंसान के जीवन में कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, उनमें से कुछ जन्म के साथ मिलते हैं तो कुछ जिंदगी की राहों पर चलते चलते जुड़

होते हैं। उनमें से कुछ रिश्ते सफर में साफ साथ निभाते हैं तो कुछ बीच सफर में कहीं पीछे छूट जाते हैं। कुछ रिश्ते उम्मीदों और अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं तो कुछ अहम के चलते मिट जाते हैं। और श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं रिश्तों की, क्योंकि आज है भाई दिवस और आप तो जानते ही हैं भाई का रिश्ता कितना प्यारा होता है।

सोनू निगम, जसविंदर नरूला और जयेश गांधी के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे अपनी फिल्म से। बोल थी समीर के, धुन सजाई थी हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, हर साल 24 मई को हम भाई दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ही होता है भाइयों के बीच के अटूट रिश्ते, उनके सहयोग और जीवन भर की दोस्ती को सम्मान देना। इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के अलबामा शहर में रहने वाले सी डैनियल रोड्स ने सन 2000 में की थी। इसके बाद से हर साल 24 मई को हम ये दिवस मनाते हैं।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, आज 24 मई है और आज ही के दिन 1954 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की थी। वो यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पांचवी और भारत की पहली महिला हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के छोटे से गांव नाकुरी में हुआ था। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह हिमालय का हिस्सा है और यह भारत, नेपाल और तिब्बत तीन देशों के बीच पड़ता है। तीनों में इसके स्थानीय नाम अलग अलग हैं। भारत में इसे गौरी शंकर चोटी बोला जाता है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा अर्थात स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे सदियों से चोमो लेंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। बछेंद्री पाल का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उन्होंने अदम्य साहस और अपना उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया है।

0: सचेत टंडन और शाहिद मालिया की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ फिल्म थी टॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी। इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

श्रोताओं, अभी झारखंड समेत पूरा देश गर्मी के चपेट में है और गर्मी के प्रकोप से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे डिवाइसेस भी पीड़ित होते हैं। गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है क्योंकि ज़्यादा तापमान इनके बैटरी और परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है। ऐसे में स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स को उचित रखरखाव और सावधानी से इस्तेमाल करके गर्मी के असर से बचाया जा सकता है। जैसे स्मार्टफोन के लिए, अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे बंद करने के बजाय एयरप्लेन मोड ऑन कर दें, कवर हटा दें और छांव में रखें ताकि ये जल्द ठंडा हो सके। ब्राइटनेस कम रखें और 60 हर्ट्ज मोड पर रखें क्योंकि इससे फ़ोन पर लोड कम पड़ता है, कम गर्म होता है और बैटरी भी ज़्यादा चलती है। चार्जिंग के दौरान फ़ोन गर्म होने पर चार्जर हटा दें और पहले उसे ठंडा होने दें। पुराने फ़ोन में बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है, इसीलिए हेवी गेमिंग और एप्स कम चलाएं। गर्मी के मौसम में टैबलेट भी फ़ोन की तरह जल्दी गर्म हो सकता है। लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या धूप में इस्तेमाल से बची और ब्राइटनेस कम रखें। लैपटॉप को गर्म होने से बचाने के लिए उसे फ्लैट सतह की बजाय स्टैंड या ऊंची सतह पर रखें ताकि एयर फ्लो सही रहे। एक साथ बहुत सारे टैब या भारी सॉफ्टवेयर नहीं चलाएं क्योंकि इससे सिस्टम पर लोड बढ़ता है। अगर फैन तेज चले तो कुछ देर काम रोककर सिस्टम को आराम दें। कुछ और भी बातें हम करेंगे, पहले एक गीत सुनते हैं।

अलका याग्निक और साथियों की आवाजें थी, प्रसून जोशी की रचना थी, धुन जतिन ललित ने बनाई थी, फिल्म थी हम तुम। श्रोताओं, हम बातें कर रहे थे गर्मी के मौसम

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थी बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में। आप सुन रहे थे इंदीवर की रचना, फिल्म थी गिरफ्तार। श्रोताओं, एसआईआर को लेकर आज विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य प्री एसआईआर के दौरान वोटर मैपिंग से छुटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ना और उनका शत प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करना है। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया है कि कैंप के दौरान सभी बूथों पर उन मतदाताओं की सूची जारी की जाएगी जो मैपिंग से छूट गए हैं। बूथ पर आने वाले ऐसे सभी नागरिकों की ऑन द स्पॉट मैपिंग की जाएगी। दोनों दिन यानी शनिवार को भी ये कैंप जारी था और आज भी ये कैंप है। सभी बूथों पर बीएलओ और संबंधित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रखी गई है। इसके लिए मतदाताओं को कुछ काम भी करना है, जैसे अपने नजदीकी बूथ पर जाकर जारी की गई सूची देख सकते हैं। यदि आपका नाम पूर्व में मैपिंग से छूट गया है, ऐसे वोटर वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट के मुताबिक पिता माँ के नामों से मिलान करें। नहीं मिलने पर पासपोर्ट समेत 13 आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ से तुरंत मैपिंग कराएं।

शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी। गीतकार थे समीर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म थी जवाब हम देंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आपको बताते चले, आज है 24 मई और आज है विश्व सिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस। सिज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक दीर्घकालिक मस्तिष्क यानी मानसिक विकार है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और वास्तविकता को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके तीन मुख्य लक्षण हैं। सकारात्मक लक्षण में मतिभ्रम यानी आवाजें सुनाई देना या ऐसी चीजें दिखना जो वास्तव में नहीं है और उसके लिए भ्रम होता है। नकारात्मक लक्षण में भावनाओं का अभाव, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाना और सामान्य गतिविधियों में रुचि कम लेना। संज्ञानात्मक लक्षण यानी सीखने के लक्षण, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है और याददाश्त कमजोर होती है। सिज़ोफ्रेनिया के लिए कोई खास कारण नहीं होता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे आनुवांशिक मस्तिष्क में रसायनों यानी न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन और पर्यावरणीय कारक शामिल हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर डॉक्टर एंटी साइकोटिक दवाएं लिखते हैं जो मस्तिष्क के रसायनों को नियंत्रित करके लक्षणों को कम करती है, पर इसके लिए थेरेपी यानी काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक थेरेपी कारगर होती है और मरीजों को सामान्य जीवन जीने में मदद करती है। साथ ही पारिवारिक सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मरीज के ठीक होने में उनके परिवार और दोस्तों का भावनात्मक सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज थी। आप सुन रहे थे समीर की रचना नदीम श्रवण के संगीत पर। फिल्म थी साजन। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए

0: Hollywood.
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत

जयराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के

0: बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। बेसबब आंख से अब अस्क उमर आते हैं, हमको विवक्त की बरसात से डर लगता है, अब इसके सिवा और मोहब्बत में रहा क्या, आई जो तेरी याद तो आंसू निकल आए।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे नील कमल फिल्म से। गीतकार थी साहिर लुथियानवी, संगीत दिया था रवि ने। चाहने वालों पर भी क्या क्या सितम होते हैं, रुसवाई मिलती है भरी महफिल में।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की धुन पर। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे पगला कहीं का फिल्म से। बोल थे हसरत जयपुरी के, धुन सजाई थी शंकर जयकिशन ने। वो डगर ही क्या जिसकी मंजिल आप तक ना पहुंचे, वो चमन की बहारे क्या जिसकी चुभन आपको दर्द दे, और वो महफिल भी क्या जहां आप न रहें

मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से। बोल थी आनंद बख्शी के, धुन बनाई थी आरटी वर्मन ने।

श्रोताओं, दोपहर 1:20 से और दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्मी तराने। 3 बजे सुनिएगा रोजगार समाचार। 3:05 पर आप सुनेंगे चंद गसली। फनकारा होंगी सुमोना रॉय विश्वास। 3:15 का समय होगा झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे नागपुरी लोकगीत। कलाकार होंगी बीना सिंह एवं साथी। उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 3:30 से हम प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी गिरिजा देवी से पीलू ठुमरी। तीन बजकर 45 पर भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। कलाकार होंगी क्षितिज मिश्र। सामुदायिक गीत पाठ का समय शाम 4:02। शाम 4:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे अंग्रेजी में। कार्यक्रम कल कारखाने आप सुन सकते हैं 5:30 से। शाम 6:10 का समय होगा झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे खड़िया लोकगीत। कलाकार होंगे बुधराम खड़िया और साथी। शाम 6:30 का समय होगा कृषि जगत कार्यक्रम का। आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा, पशुधन कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की जानकारी।

शाम 7:45 पर आप सुनेंगे हमारा पर्यावरण कार्यक्रम। आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के तहत चर्चा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, और वार्ता में आप सुनेंगे पर्यावरण शिक्षा और शिक्षकों की इसमें भागीदारी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। वैसे बहनों, इस गर्मी में भी मेरा गला खराब होना बताता है कि मैंने मौसम को तवज्जो नहीं दिया और पूरी मस्ती की। बारिश हुई तो उसमें भी भीगी, जिसका ये परिणाम है मेरा गला खराब होना। इसलिए ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, बल्कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मस्ती थोड़ी कम और अपने ऊपर और अपनों के ऊपर ध्यान थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो मस्त रह सकते हैं ना। वैसे मस्ती तो हमारी संस्कृति में बिल्कुल रची बसी सी है, और चाहे मौसम कोई भी हो, कोई ना कोई त्यौहार तो लगा ही रहता है। अब देखिए ना, इस सप्ताह गंगा दशहरा है, हिंदू धर्म में एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार। ये हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, और इसे मुख्य रूप से गंगा अवतरण के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी वो दिन जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहनों, सूर्य वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल के श्राप से भस्म कर दिया गया था। उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए केवल स्वर्ग में बहने वाली नदी गंगा का जल ही एकमात्र उपाय था। राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी, लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वो सीधे धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, और शिव जी ने गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया, और फिर अत्यंत शांत रूप में धरती पर जाने के लिए उनकी एक एक चोटी से धारा छोड़ दी। जिस दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर आई, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत में दश का अर्थ होता है बहनों दस, और हरा का अर्थ होता है हरण करना या नष्ट करना। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 कायिक यानी शारीरिक पाप, बिना दी हुई वस्तु लेना, हिंसा करना और परस्त्री गमन। 4 वाचिक यानी वाणी के पाप, जैसे कि कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और निरर्थक प्रलाप करना। और 3 मानसिक पाप, दूसरे के धन को हड़पने का विचार, किसी का अहित सोचना और नास्तिकता या फिर गलत हठ। बहनों, ऐसा माना जाता है कि इन 10 प्रकार के पाप जो है ना, वो नष्ट होते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से। बहनों, इस दिन श्रद्धालु हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश और प्रयागराज जैसे तीर्थस्थलों पर जाकर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, चूंकि ये त्योहार भीषण गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए ठंडे पानी, शरबत, मटका या घड़ा, सत्तू, तरबूज, पंखा और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। संक्षेप में कहें तो ये त्योहार राजा भागीरथ के दृढ़ संकल्प, भगवान शिव की कृपा और मानव जाति के कल्याण और शुद्धिकरण के लिए माँ गंगा के धरती पर आगमन की कृतज्ञता के रूप में मनाया जाता है। और इस त्योहार के साथ ही बहनों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे त्योहार हम महिलाओं से ही होते हैं, इसलिए हम महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें वरदान मिला है सृष्टि करने का। जी हाँ, इस सृष्टि को चलाने के लिए संतानोत्पत्ति जरूरी है, और संतानोत्पत्ति में माहवारी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये माहवारी हमारे महिलाओं के लिए हमारे समाज में आज भी एक टैबू की तरह बना हुआ है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जबकि इस बारे में जानकारी होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। हर महीने आने वाली इस माहवारी के दौरान शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ संक्रमण से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने के लिए। इस समय लापरवाही बरतने से UTI, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रैसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए महामारी के समय स्वच्छता से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहनों, चाहे आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती हों या टेम्पोन, इसे हर 4 से 6 घंटे में जरूर बदलें। भले ही ब्लीडिंग कम हो, पैड को लंबे समय तक लगाए रखने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करती हैं, तो उसे हर 6 से 12 घंटे में खाली करके साफ पानी से धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। बहनों, सही तरीके से सफाई करना भी बेहद जरूरी होता है।
जननांगों की सफाई हमेशा आगे से पीछे की तरफ करनी चाहिए। पीछे से आगे की तरफ हाथ लगाने से मलाशय के हानिकारक बैक्टीरिया योनि मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। योनि का अपना एक प्राकृतिक पीएच संतुलन होता है। इसे साफ करने के लिए सुगंधित साबुन, बॉडी वॉश या केमिकल वाले इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। केवल गुनगुना या फिर सादा पानी ही सबसे सुरक्षित है। मैंने इस दौरान केवल सूती और ढीले अंडरगार्मेंट्स पहने। सिंथेटिक कपड़े हवा को रोकते हैं जिससे नमी और पसीना जमा होता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दिन में कम से कम दो बार या जरूरत पड़ने पर अपने अंडरवियर को जरूर बदलें। धोते समय इन्हें अच्छे से डिटर्जेंट से साफ करें और धूप में सुखाएं अच्छी तरह से। और कभी भी सैनिटरी पैड या टेम्पोन को टॉयलेट में फ्लश ना करें, चाहे कहीं भी आप जाएं, इससे ड्रेनेज ब्लॉक हो सकता है। इस्तेमाल किए गए पैड को किसी साफ कागज या अखबार में अच्छी तरह से लपेटकर सीधे कूड़ेदान में डालें। इसके बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना मत भूलिए। और हाँ बहनों, इस पीरियड्स के दौरान नहाने से शरीर साफ रहता है, ताजगी मिलती है और मांसपेशियों के खिंचाव और दर्द में भी आराम मिलता है। इसलिए नहाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कई जगह पर इस समय में 2-3 दिन नहाते नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे, और इस समय हल्का वॉक और योग करने से दर्द में राहत मिलती है। अगर पैड के इस्तेमाल से जांघों के आसपास रैशेस हो जाएं, तो एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर नारियल तेल का उपयोग करें और कुछ समय के लिए त्वचा को सूखा रहने दें। अगर दर्द असहनीय हो या ब्लीडिंग में बहुत बड़े थक्के आ रहे हैं, तो जरूर से डॉक्टर की सलाह लें। बातें तो ये जरूरी थी ही, तो चलिए इसी बात पर हम डॉक्टर लीला शर्मा, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उनसे बात करते हैं। विषय है महा

0: आज हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीला शर्मा जी। सबसे पहले डॉक्टर लीला शर्मा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। मैं चाहती हूँ जयश्री जी को धन्यवाद कहना, जिन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि माहवारी के वक्त स्वच्छता का क्या वैल्यू है और कैसे करना है अगर दर्द होता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जिन्हें पहली बार माहवारी हुआ है, वो कुछ नहीं जानती हैं इसके बारे में और उनके पेरेंट्स भी ठीक से समझा नहीं पाते हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि माहवारी क्या है। देखिए, ये सब लड़कियों को आता है और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए अच्छी बात नहीं है, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन जिन्हें आता है पहली बार, जो मेंस आएगा, 1 साल आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करता है, कैसे आप टाइम से आ रहा नहीं आ रहा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर दर्द हो रहा है तो नॉर्मल पेन भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर दर्द है तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। हो सकता है दर्द आए, कभी 1 महीने में मेंस आए, कभी 2 महीने में आता है, माहवारी का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, बॉडी उसको सेट करता है क्योंकि हार्मोन का लेवल अभी परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। अगर दर्द है तो मामूली पेन किलर आप कभी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि सफाई का क्या वैल्यू है। सफाई का मतलब है कि आपको माहवारी के वक्त अपने जो भी पेरिनियल एरिया है उसको साफ रखना है, उसके लिए आप अंदर की ओर ज़्यादा सफाई ना करें, बाहर की ओर जो भी है उसको आप नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर या साबुन से धो सकते हैं, बट अंदर आपको यूज़ नहीं करना है, वो हमारी बॉडी में सिस्टम है जो ऑटोमेटिक साफ कर लेता है। दूसरा कि आप जो भी यूज़ करते हैं, पैड यूज़ करते हैं, टैम्पून यूज़ करते हैं, या आजकल कप भी आ गया है, मेंस्ट्रुअल कप, अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप टाइमली क्लीन करते रहें और सफाई करके उस एरिया को क्लीन रखें। क्योंकि ये जो सफाई है अगर आप नहीं करते हैं तो ये इन्फेक्शन आपको कभी कभी अंदर तक चला जाता है और यूट्रस में आपका ये जाकर PID का इन्फेक्शन होता है जो फ्यूचर में आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर्ड कर सकता है। इसलिए माहवारी के वक्त सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पैड यूज़ करना है, कपड़ा का उपयोग ना करें। अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं, आपके पास पैड की सुविधा नहीं है, तो आप एक कपड़े को रीयूज़ नहीं करें, उसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दें। उस वक्त आपको क्लीन रखना है और माहवारी के वक्त जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर हल्का फुल्का है तो आप ठीक है, आप घर में मैनेज कर सकते हैं, जैसे हॉट वाटर बैग हुआ हल्का पेन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें और एक सिंपल जो अल्ट्रासाउंड हम लोग सजेस्ट करते हैं देख लें, क्योंकि अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, ट्यूमर है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर लें। और हल्का दर्द या ब्लीडिंग थोड़ा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, 1 साल आप वेट करें, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है, हर महीने मेंस आने का जो प्रक्रिया होता है वो नॉर्मली होना चाहिए। अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आ रहा तो उसको आप 1 साल तक वेट कर लें, 1 साल के बाद अगर ये सेम प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को जरूर जाकर मिलें और उससे सलाह लें।
0: जैसा कि आपने बताया लीला जी कि 1 साल के बाद से अगर देर से आता है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, तो ग्रामीण महिलाओं के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो हमेशा नए कपड़े या फिर नया पैड यूज़ करें, तो क्या उसे साफ करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटॉल पानी वगैरह में साफ करके, सर्फ से साफ करके, या फिर नहीं करना चाहिए, और किस तरह से सफाई रखनी चाहिए कि बहनों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि माहवारी तो सृजन का ही एक अंग है ना।
1: हाँ, तो ये आप जो कपड़ा को रीयूज करते हैं वो हमारे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड जो है बहुत बड़ा सोर्स होता है इन्फेक्शन का, आप कितना भी क्लीन करेंगे वो साफ नहीं हो पाएगा। अभी तो मेडिकल आपके हर गांव में उपलब्ध है, आप मेडिकल से कॉटन ले लें और उसको एक पतला कपड़ा जो भी कॉटन का है उसे यूज़ करें तो वो भी चलेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप पहले अपना ये क्लीन वाला पैड रख लें, पैड भी तो अभी हमारे हर मेडिकल में अवेलेबल होता है, उसको यूज़ करें और उसके नीचे आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा अनस्टरलाइज चीज़ आप डायरेक्ट अपने पेरिनियल के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दें, नहीं तो ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू बहुत जल्दी एसेंड कर जाता है और अंदर ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आता है, जो हमारी महिलाएं आती हैं बच्चे के लिए, उस वक्त पता चलता है कि उनका ट्यूब ब्लॉकेज है, तो ये सब प्रॉब्लम के लिए आपको कपड़ा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। और सफाई के लिए आप देखिए, वहाँ साबुन का प्रयोग हम लोग अंदर की ओर मना करते हैं, अंदर आप पानी से ही साफ करें, नॉर्मल वाटर, ल्यूक वर्म वाटर, ये सब चलेगा, बट
0: हल्का डिटॉल, गर्म पानी,
1: हाँ, डिटॉल और साबुन को अंदर नहीं यूज़ करें। वहाँ का जो स्किन होता है बहुत मुलायम होता है, अगर वहाँ लैक्टोबैसिलस जो हमारा नेचुरल प्रोटेक्टर होता है वेजाइना का, वो आप हटा देंगे तो आपको इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, इसलिए आपको सफाई नॉर्मल पानी से ही करना है। बाहर के एरिया में आप सोप ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर इसको

0: नहीं करे। बहुत लोग डूसिंग करते हैं, वेजाइनल डूसिंग बोलते हैं, उसको भी नहीं करना है, वो सब इन्फेक्शन का सोर्स है। ये डूसिंग होता है वेजाइना के अंदर, बहुत लोग पानी से क्लीन करते हैं या फिटकरी ये सब वाटर यूज़ करते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके बॉडी में इतना सिस्टम स्ट्रांग है कि आपका वेजाइना खुद ब खुद ही क्लीन कर लेता है। तो बस बाहर आपको अपना सफाई रखना है, 4 से 6 घंटे में आपको पैड चेंज करना है। अगर बहुत ब्लीडिंग है आपको लग रहा तो और आप जल्दी जल्दी भी पैड चेंज कर सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल कप को धोकर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, फिर आप यूज़ करें। तो ये सब आपको सेफ्टी पॉइंट को याद रखना है।
1: तो माहवारी के समय स्वच्छता के साथ और क्या ध्यान रखना चाहिए कि माहवारी सुखदायक हो ना कि दुखदायक?
0: तो उसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट करना है, और सफाई के लिए तो मैं बता ही आपको, जैसे आप क्लीन करें, पैड यूज़ करें और थोड़ा रेस्ट करें। बहुत ज़्यादा हेवी वर्क उस वक्त नहीं करना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है। और सफाई के लिए तो आपको अपना कोशिश करें कि 3-4 घंटे में आप पैड को चेंज कर लें, क्योंकि ब्लड जो है बहुत बड़ा सोर्स होता है, वो अगर रहेगा तो आपका इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे आप कहीं वर्क पे हैं तो वहाँ भी अपने पैड को यूज़ करें, चेंज करें, ये सब आप ध्यान रखें, स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है।
1: यानी स्वच्छता का ध्यान रखकर बहनें अपने माहवारी को बेहतर अनुभव में बदल सकती हैं। और अगर कुछ तकलीफ ज़्यादा है, जैसे कम या ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: हाँ, अगर आपको इसमें इससे अगर हटके कुछ अलग सिम्टम लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत हेवी हो रहा है, तो आप डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत बार महिलाएं इस कंडीशन में आती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो हो जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपका ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलें। और माहवारी के वक्त मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अच्छा डाइट लें, फ्रूट्स लें, अगर पॉसिबल है तो आप फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, ताकि आपके शरीर में कोई कमजोरी ना आए और आपका स्वास्थ्य सही रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लीला शर्मा जी कि आपने हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी माहवारी स्वच्छता पर।
0: हाँ, धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ जितना भी मैंने सजेस्ट किया आप इसको यूज़ करें, और फ्यूचर में जितना भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो भी आपका माहवारी का प्रॉब्लम से, उससे बच के रहें। धन्यवाद।
1: महावारी में स्वच्छता जरूरी, इस विषय पर हम अभी बात कर रहे थे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीला शर्मा से। बहनों, जिंदगी में हमारे हंसी खुशी बहुत ही प्यारी होती है, और जब सब आंगन में हम बैठते हैं और बातें होती हैं और काम भी होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा ही एक गीत मुझे याद हो आया है पिंजर फिल्म का। आइए सुनते हैं जसपिंदर नारूला, प्रीति उत्तम सिंह, अमय दाते और निहार एस की आवाज़ में

और जब बातें हो रही हैं बहनों त्योहार की, तो हम ये कैसे भूल जाएं कि बकरीद त्योहार भी इसी हफ्ते है। बकरीद, जिसे आधिकारिक तौर पर ईद उल अजहा या ईद उज जुहा यानी बलिदान का ईद कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख और बेहद पवित्र त्योहार है। ये त्योहार रमजान महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुब अल हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से अल्लाह के नबी यानी कि पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के महान बलिदान और उनकी अटूट आस्था की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की भक्ति और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज कुर्बान करने को कहा। इब्राहिम साहब के लिए उनके बुढ़ापे में पैदा हुए उनके इकलौते बेटे हजरत इस्माइल सबसे प्रिय थे, तो अल्लाह का हुक्म मानकर हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने अपने बेटे को इस बारे में बताया तो बेटे इस्माइल ने भी मुस्कुराते हुए अल्लाह की रजा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांधी ताकि पिता की ममता आड़े न आए और छुरी चलाई, तो अल्लाह ने उनके इस सच्ची निष्ठा और जज्बे को कबूल कर लिया। जिब्राइल यानी कि फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे से हटाकर वहां एक दुम्बा भेड़ जैसा पशु रख दिया। जब इब्राहिम साहब ने आंखों से पट्टी हटाई तो उनका बेटा सही सलामत खड़ा था और वहां एक जीव की कुर्बानी हो चुकी थी। तभी से अल्लाह की राह में जीव, बकरे, भेड़ या ऊंट की कुर्बानी देने और इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। बहनों, बकरीद का मतलब केवल किसी चीज की कुर्बानी देना या लजीज पकवान खाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपे हैं। ये त्योहार सिखाता है कि इंसान को ईश्वर यानी

अल्लाह के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, अपनी सबसे प्रिय चीज या अपनी इच्छाओं को समाज और ईश्वर की भलाई के लिए छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। प्रतीकात्मक रूप से जानवर की कुर्बानी का अर्थ है कि इंसान अपने अंदर छिपे पशुत्व, अहंकार, लालच, नफरत और स्वार्थ जैसी बुराइयों को हमेशा के लिए कुर्बान कर दे। और आप जानती हैं बहनों, कुर्बानी के मांस को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का नियम है। पहला हिस्सा जो है गरीबों, जरूरतमंदों और मिस्कीनों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी गरीब या वंचित व्यक्ति त्योहार के दिन भूखा ना रहे। ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटता है। हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल का किस्सा इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और सही रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा देता है। बहनों, ईद उल अजहा यानी कि बकरीद इंसान को त्याग, परोपकार, नेकी और मानवता की सेवा का पाठ पढ़ाती है। और बहनों, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और तापमान काफी बढ़ रहा है, तो इस मौसम में लू, डिहाइड्रेशन, घमौरियों और पेट की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर यानी 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीजिए। सादे पानी के अलावा अपने आहार में नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पन्ना, बेल के शरबत, ये सब जरूर पीजिए और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखिए। चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब से बिल्कुल बचिए, क्योंकि ये शरीर को हाइड्रेट करने के बजाय अंदरूनी रूप से सुखाते हैं। इस मौसम में ताजा और हल्का भोजन कीजिए। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर, लौकी, तोरई, पुदीना जैसी चीजों का ज्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और तले भुने और मसालेदार खाने से दूरी बनाइए। और इस मौसम में केवल हल्के और सूती कपड़े ही पहने और रंग भी हल्के ही रखिए। सूती कपड़े क्या होते हैं ना बहनों, पसीना सोखते हैं और शरीर में हवा का प्रवाह बनाए रखते हैं, जिससे घमौरियां नहीं होती। जब भी बाहर निकले, चेहरा और सिर सूती कपड़े या स्कार्फ से ढक लें और धूप का चश्मा और छाते का इस्तेमाल जरूर करें। और कोशिश करें कि दिन के 10 बजे से 3-4 बजे तक सीधे धूप में ना निकलें, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे तेज और हानिकारक होती हैं। और बहनों, चलते चलते हम आपको आम पन्ना बनाना जरूर बताएंगे, ताकि इस गर्मी के मौसम में ये बेहतरीन ड्रिंक आप सभी पी सकें। तो ये जो आम पन्ना होता है ना बहनों, ये न सिर्फ शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाता है, बल्कि लू और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, और इसे बनाना बेहद आसान है। सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए वो आप लिख लीजिए। कच्चे आम यानी कि कैरी 2 से 3 मध्यम आकार के, ताजा पुदीना के पत्ते 1 कप साफ धुले हुए, चीनी या फिर गुड़ 1/2 कप या फिर स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद नमक 1/2 छोटा चम्मच, काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, ठंडा पानी 3 से 4 ग्लास। तो बनाने के लिए बहनों, सबसे पहले कच्चे आमों को अच्छी तरह से धो लें। अब इन्हें प्रेशर कुकर या फिर किसी भी डेक्ची में 1-1.5 ग्लास पानी के साथ डालें। अगर कुकर में करिए तो 2-3 सीटी आने तक उबाल लें। आप चाहें तो इन्हें छीलकर और काटकर भी उबाल सकती हैं। उबलने के बाद आमों को बर्तन से निकालकर पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। जब आम ठंडे हो जाएं तो उनका छिलका हटा दीजिए। 1 चम्मच की मदद से या फिर हाथों से भी अच्छी तरह से मसलकर आम का सारा पल्प 1 कटोरे में निकाल लें और गुठली को अलग कर दीजिए। अब बहनों, मिक्सर ग्राइंडर के जार में आम का पल्प, ताजे पुदीने के पत्ते, चीनी या फिर गुड़ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और काली मिर्च पाउडर डालें। इसमें थोड़ा सा पानी लगभग 1/2 कप डालकर इसे पीस लें और एक स्मूथ गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस गाढ़े पेस्ट को एक बड़े जग या बर्तन में निकाल लीजिए। इसमें 3 से 4 ग्लास एकदम ठंडा पानी डालिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए, ताकि सारी चीज़ें एक सार हो जाएं। आप चाहें तो इसे इस समय पे एक बार थोड़ा सा चेक कर देख सकती हैं। अगर ज़्यादा खट्टा लगे तो थोड़ी सी पिसी चीनी मिला सकती हैं, और फिर इसे आप ताजे पुदीने के पत्ते और चुटकी भर भुने जीरे के पाउडर से गार्निश करके एकदम ठंडा ठंडा खुद भी पी सकती हैं और अपनों को पिला भी सकती हैं। और हाँ बहनों, अगर आप इस आम और पुदीने के गाढ़े पेस्ट को बिना पानी मिलाए एक कांच के साफ जार में भरकर फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकती हैं। 1 हफ्ते से 10 दिनों तक स्टोर रह सकता है ये। जब भी कोई मेहमान आए या आपका मन करे, बस गिलास में 2-3 चम्मच ये पेस्ट डालें, ठंडा पानी डालें और इंस्टेंट आम पन्ना आपका तैयार है।
और फिलहाल वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा।

0: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। 1:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत

0: का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jaishankar said the talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio described India as one of the United States' most important strategic partners.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on key issues that will shape the coming century. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 11th round of counting for the Falta Assembly report. Counting is underway at Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of the BJP was leading by 44,891 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India Marxist was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress in third, and Jahangir Khan of All India.

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थियों से पंजीकरण पोर्टल पर 27 मई तक मांगा बैंक डिटेल्स। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड स्वरूप करने को बताया अनुचित। देवघर जिले के 2 शिक्षकों का तबादला, आदेश किया रद्द। स्वास्थ्य विभाग विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान करेगा शुरू। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से किया जाएगा लागू। और झारखंड में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में आज हीट वेव चलने का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इबोला वायरस के फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इस रोग का कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आवेदन शुल्क वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि एक बार बैंक डिटेल्स जमा होने के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बैंक डिटेल्स जमा करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर 27 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर पेश है रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग

0: के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता है। कल एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के दो शिक्षकों के तबादले के आदेश को निरस्त करते हुए मूल पदस्थापन पर बहाल रहने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि विभाग को शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन पर अलग से कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान चलाएगा। यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से लेकर 26 जून तक चलेगा। हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।
2: स्वास्थ्य विभाग की ओर से झारखंड के सभी जिलों में लगभग एक माह तक चलाया जाने वाला विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान विशेष होगा। इसके तहत स्कूलों और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, न्यायालय और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू निषेध संबंधी सूचना पट लगाए जाएंगे। कोटपा 2003 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध कानून के तहत जिलों में विशेष छापामारी अभियान भी चलाया जाएगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा शाम 7 बजे से 30 मिनट तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रही हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा के प्राचीन गुरुकुल शांति आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर के समापन समारोह में यह बातें कही।
3: स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश के बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो स्कूल उनके दरवाजे पे आए। आज एकल विद्यालय के रूप में देश में लाखों लाख एकल विद्यालय उनके गांव के झोपड़पट्टी के सामने एकल स्कूल चल रहा है।
1: मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली में 28 जून से 7 जुलाई तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लोहरदगा की 80 बेटियां भाग लेगी। इन बेटियों को संसद भी दिखाया जाएगा। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 49वें एकल ऑन व्हील्स के प्रथम बैच का कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों और सेवा बस्तियों के बच्चों और महिलाओं तक डिजिटल शिक्षा पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक बस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर 3 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने CSR के तहत आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट के माध्यम से धनबाद सदर अस्पताल को हेल्थ ATM और पोर्टेबल ECG मशीन उपलब्ध कराई है। आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।
4: इस मशीन का उद्देश्य बेसिकली 45 प्लस पैरामीटर्स का इंस्टेंट डायग्नोसिस होता है। इसमें जैसे कि अपने बेसिक प्राइमरी लेवल का हेल्थ चेकअप है, हाइट, वेट, BMI पैरामीटर्स, ब्लड शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन है, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ये सारे टेस्ट इसके थ्रू हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा इस मशीन का ये है कि तुरंत ही इसके द्वारा रिपोर्ट निकल जाती है।
1: गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के कुमार के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है या नहीं, इसकी सूचना अब तक नहीं दी गई है। गिरिडीह जेल में बड़े नक्सली और अपराधी बंद।

है। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रामगढ़ जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक सखियों और सामुदायिक कैडरों ने केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज से अगले दो दिनों तक राजधानी रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थियों से पंजीकरण पोर्टल पर 27 मई तक मांगा बैंक डिटेल्स। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड स्वरूप करने को बताया अनुचित। देवघर जिले के 2 शिक्षकों का तबादला आदेश किया रद्द। स्वास्थ्य विभाग विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान करेगा शुरू। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध की सख्ती से किया जाएगा लागू। और झारखंड में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में आज हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का प्रसारण है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
10: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे पटाखा फिल्म से। शब्द करते हैं गुलजार, संगीत दिया था विशाल भारद्वाज ने। अगला गीत आइए सुनते हैं जीरो फिल्म से। आवाजें हैं राजा कुमारी और भूमि त्रिवेदी की। इरशाद कामिल के बोल को संगीत से सजाया है अजय अतुल ने।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

ये थी वसुंधरा दास, दिवेंदु मुखर्जी और अनमोल मलिक। अनु मलिक के संगीत पर आप सुन रहे थे अगली और पगली फिल्म का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं नमस्ते इंग्लैंड फिल्म का, बादशाह की धुन है। आवाजें हैं दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आस्था गिल की।

0: मनोज मंतशिर की रचना को आप सुन रहे थे जीत गांगुली के धुन पर, आवाज थी दिव्या कुमार की, फिल्म थी हमें तुमसे प्यार कितना।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।

भारत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नक्श अजीज और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीत दिया था विशाल शेखर ने।

मलंग फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सुन रहे थे वेद शर्मा के स्वर में, गीतकार थे कुणाल वर्मा और हर्ष लिम्बाचिया, संगीत दिया था वेद शर्मा ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा आइए सुनते हैं, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास फिल्म से संजीव आनंद झा के धुन पर शहजाद अली की आवाज़ है, शब्द रचना है कबीर केवल की।

और श्रोताओं, ये थी फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

0: raising a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants. Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Devangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और

0: चेहरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र

का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आइए सुनिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे चोरी चोरी फिल्म से। गीतकार थे हजरत जयपुरी, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ थी राजा मेहदी अली खान के गीत को आप सुन रहे थे मदन मोहन के धुन पर। फिल्म थी अनपढ़।

कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा

उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

महंगाई महंगाई महंगाई महंगाई दुहाई है दुहाई है दुहाई है तो तू कहाँ से आई तुझे क्यों मौत ना आई हाय महंगाई महंगाई।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना थी वर्मा मलिक की, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। युगल स्वर थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के, शब्दकार थी आनंद बख्शी, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि अब हमें लेनी होगी अनुमति फिल्म संगीत कार्यक्रम से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए एक नजर डालते हैं हमारे शेष प्रसारणों पर। 3 बजे आप सुनेंगे रोजगार समाचार, 3:05 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गजल, फनकारा होंगी सुमोना रॉय विश्वास। पर झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे नागपुरी लोकगीत, कलाकार होंगी वीणा सिंह एवं साथी। 3:30 का समय होगा उप शास्त्रीय संगीत का। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे पीलू ठुमरी विदुषी गिरिजा देवी की आवाज में। साथ में आप सुनेंगे पहाड़ी ठुमरी पंडित जगदीश प्रसाद के स्वर में। पर भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा, कलाकार होंगे क्षितिज मिश्र। शाम 4:02 पर सामुदायिक गीत पाठ का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 4:30 से आप सुनेंगे फिल्मी तराने। 102.4 MHz पर दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर पेश है रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त दिलेश्वर महतो से भी मुलाकात की। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम भावना एवं समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले के विकास को नई गति प्रदान की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। कल एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के 2 शिक्षकों के तबादले के आदेश को निरस्त करते हुए मूल पद स्थापन पर बहाल रहने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि विभाग को शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन पर अलग से कार्रवाई की जा सकती है। आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रादेशिक समाचार। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रामगढ़ जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक सखियों और सामुदायिक कैडरों ने केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रही हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा के प्राचीन गुरुकुल शांति आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर के समापन समारोह में ये बातें कही। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने CSR के तहत आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट के माध्यम से धनबाद सदर अस्पताल को हेल्थ ATM और पोर्टेबल ECG मशीन उपलब्ध कराई है। आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है।
2: लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में नारायणपुर और कर्माटांड़ जिले में 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास जो बरामदगी हुई है वो कुल

0: मोबाइल है, 14 सिम कार्ड है, 4 एटीएम कार्ड है, 2 लैपटॉप है और लगभग 50,000 रुपए नगद राशि बरामद की गई है, जो इनके द्वारा लोगों से ठगी करके अपने पास रखा गया।
1: धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गांव में घुसाया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। सूचना मिलने पर मशालची पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को गाँव से बाहर निकाला गया। गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात उपायुक्त राम निवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है या नहीं, इसकी सूचना अब तक नहीं दी गई है। गिरिडीह जेल में बड़े नक्सली और अपराधी बंद हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है, आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं, प्रस्तुत है रोजगार समाचार। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 11,127। शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले या फिर संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने वाले आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। इन उम्मीदवारों को सबसे पहले प्रारंभिक स्क्रीन टेस्ट देना होगा, उसके बाद CBT 2 यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करना होगा, फिर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर ₹500 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवारों को ₹250 आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं https://www.rrbapply.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तहत ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 100 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवश्यक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ, IIBF से फॉरेक्स ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में सुपरवाइजरी ऑफिसर रोल में ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 23 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन 2 जून 2026 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च करें https://sbi.bank.in। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जमशेदपुर। 3:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गजलें। फनकारा हैं सुमोना रॉय विश्वास।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गजल सुमोना राय विश्वास की आवाज में। आइए अब सुनते हैं झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं दीना सिंह एवं साथी।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे दीना सिंह एवं साथियों की आवाज में नागपुरी लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के दिवाकालीन प्रसारण। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए पीलू ठुमरी, कलाकार हैं विदुषी गिरिजा देवी।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीलू ठुमरी, कलाकार थी विदुषी गिरिजा देवी। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम के तहत पहाड़ी ठुमरी, कलाकार हैं पंडित जगदीश प्रसाद।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पहाड़ी ठुमरी, कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का प्रसारण है। 3:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत कार्यक्रम के तहत भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं क्षितिज मिश्र।

0: लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे क्षितिज मिश्र। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। केंद्रीय माध्यम

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। एसपी ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर प्लस टू उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान है। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गाँव में घुस आया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 प्रसारित किया जाएगा।
1: आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। शाम की 4:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सामुदायिक गीत पाठ के तहत असमिया लेसन।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत? अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। एई माती रे, एई माती रे मोरो मोते, माटी के चूमी लो, माटी के चूमी लो, माटी के चूमी लो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। एई माटी ते एई माटी ते जीवन, एई माटी ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये एई माटी ते जीबॉन सोबी, जीबॉन जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीबॉन सोबी आकी आकी दोबारा आकी आकी आकी मोसी लो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहाँ ह की तरह से, तो आकाश ये ह और ह के बीच में आकाखार भी नहीं आकाहार भी नहीं आकाहार आकाहार।

लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे, इसके आगे है आहा आहा, मातिर बुकुत, मातिर बुकुत, मोनोर मालोती, बुटोलो, मोनोर मालोती बुटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतर है मोनोर कोरोनी रे, हुरोर हुरोर पापोरी रे, पापोरी रे आजी, इतना हो गया ना। आगे हुकुमार थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना, हुंदौर खुदीनौर, खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि, शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि, कौनो ना हुआ, आगे ना, अच्छा ठीक है, गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिएगा।

0: ମତେ
1: ଦୁବାର ହେ

आगे ना समझे। अब यहाँ तक का बोलेंगे शुरू से, 1 2 3 4। दो बार

0: यहाँ भी ऐसा है,
1: मानिकियो नु लागे लागे,
0: पहले ऐसे पढ़ना, दूसरी बार लागे, खाली लब्बा।

0: नाहू जुआ यहाँ खूब भर के आवाज जोर से बना
1: खो कुमार था पो नाहू जुआ
0: मौन और दो बार है ये।

से बोलना एक बार और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना कौन दौर से लो एक दो तीन चार

0: और धीरे धीरे आवाज हल्की करते चले आना। एक बार तो ए,
1: मारो माते,
0: दूसरा हल्का शुरू से लेंगे सारा गाना, है ना। एक दो तीन चार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के तमाम श्रोताओं को रेडियो दोस्त विभाग का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

दोस्ताना फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों को। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गर।

इस तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों तुम तुम में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

शागिर्द फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और इस गीत को सुरों से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इसके बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसकी धुन बनाई थी प्रीतम ने।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की युगल आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आखिर क्यों, इस फिल्म का ये गीत। गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम ले रहे हैं अमित कुमार की आवाज़ में, लव स्टोरी फिल्म से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: लव स्टोरी के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत के प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजने ही वाले हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे ठीक शाम 5 बजे समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी रांची है, आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर खूंटी में मोहम्मद जावेद हुसैन ने उपायुक्त के रूप में योगदान किया।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। SP ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर +2 उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज UPSC की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। यह निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गांव में घुसाया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, चूंकि आज दिन रविवार है इसलिए आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स।

कार्यक्रम यूथ टाइम्स अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

0: कल कारखाने सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को स्नेहलता का नमस्कार। श्रोता साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोता साथी, आज हम बात करेंगे कैसे खास दिवस की जो दुनिया के कई देशों को आपसी भाईचारे और सहयोग की डोर में बांधता है, वो है राष्ट्रमंडल दिवस। श्रोताओं, आपको पता होगा कि ये दिवस हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

श्रोताओं, ये दिवस हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जबकि भारत और कुछ अन्य देशों में इसे विशेष रूप से आज के दिन यानी 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन देशों के बीच एकता, मित्रता और सहयोग का प्रतीक है जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य हैं। एम्पायर डे के रूप में इस दिवस की शुरुआत हुई थी श्रोताओं, बाद में समय के साथ जब कई देश स्वतंत्र हुए तो इसे नया स्वरूप मिला और इसका नाम राष्ट्रमंडल दिवस रखा गया। ये दिवस आज विभिन्न देशों के बीच शांति, लोकतंत्र और विकास के साझा मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देता है। श्रोताओं, जिस लक्ष्य निर्धारण के साथ इस दिवस की शुरुआत हुई थी वो है देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाना, शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, युवाओं को वैश्विक भाईचारे और जिम्मेदारी का महत्व समझाना, अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के बावजूद मिलजुल कर आगे बढ़ना ही असली ताकत है, यही संदेश देता है ये दिवस।

आप सुन रहे थे लगान फिल्म का ये गीत। शब्द रचना थे जावेद अख्तर के, संगीत निर्देशन था यार रहमान का, आवाजें थी अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और श्री निवास की।

0: और श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण महासंरक्षण। वार्ताकार होंगी ममता सिंह।
1: मानव जीवन प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति एक विराट शरीर की तरह है। जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ आदि उसके अंग प्रत्यंग हैं। इनके परस्पर सहयोग से यह वृहत शरीर स्वस्थ और संतुलित है। जिस प्रकार मानव शरीर के किसी एक अंग में खराबी आ जाने से पूरे शरीर के कार्य में बाधा पड़ती है, उसी प्रकार प्रकृति के घटकों से छेड़छाड़ करने पर प्रकृति की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। प्रकृति के साथ दुश्मन की तरह नहीं वरन दोस्त की तरह काम करना चाहिए। हम दिनों दिन पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम भविष्य में घातक हो सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर तथ्यात्मक जानकारी हासिल कर आप स्वयं पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जान समझ सकते हैं तथा इस अभियान में अपने स्तर पर सतत प्रयास रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष एवं पशु पक्षी आदि के साहचर्य में ही देखा गया है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहाँ मानव जाति का ज्ञात इतिहास है। भारतीय संस्कृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यहाँ पर्यावरण संरक्षण का भाव अति पुरातन काल में भी मौजूद था। उसका स्वरूप भिन्न था। उस काल में कोई राष्ट्रीय वन नीति या पर्यावरण पर काम करने वाली संस्थाएं नहीं थी। पर्यावरण का संरक्षण हमारे नियमित क्रियाकलापों से ही जुड़ा हुआ था। भारतीय दर्शन यह मानता है कि इस देह की रचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही हुई है। समुद्र मंथन से वृक्ष जाति के प्रतिनिधि के रूप में कल्प वृक्ष का निकलना, देवताओं द्वारा उसे अपने संरक्षण में लेना, इसी तरह कामधेनु और एरावत हाथी का संरक्षण इसके उदाहरण हैं। कृष्ण की गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत का लौकिक पक्ष यही है कि जन सामान्य मिट्टी, पर्वत, वृक्ष एवं वनस्पति का आदर करना सीखें। जिस प्रकार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार संतुलन बनाए रखने हेतु 33% भूभाग वन आच्छादित होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में जीवन का एक तिहाई भाग प्राकृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था, जिससे मानव की प्रकृति को भली भांति समझ कर उसका समुचित उपयोग कर सके और प्रकृति का संतुलन बना रहे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पशुओं एवं वृक्षों का अंकन सम्राटों द्वारा अपने राज चिन्ह के रूप में वृक्षों एवं पशुओं को स्थान देना, गुप्त सम्राटों द्वारा बाज को पूज्य मानना, मार्गों में वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, दूसरे प्रदेशों से वृक्ष मंगवाना आदि तात्कालिक प्रयास पर्यावरण प्रेम को ही प्रदर्शित करते हैं। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि

0: पृथ्वी जल औषधि एवं वनस्पतियां हमारे लिए शांतिप्रद हों। यह शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब हम इनका सभी स्तरों पर संरक्षण करें। तभी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की इस विराट अवधारणा की सार्थकता है, जिसकी प्रासंगिकता आज इतनी बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से की जा रही छेड़छाड़ से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखने के लिए अब दूर जाने की जरूरत नहीं है। विश्व में बढ़ते बंजर इलाके, फैलते रेगिस्तान, कटते जंगल, लुप्त होते पेड़ पौधों और जीव जंतु, प्रदूषणों से दूषित पानी, कस्बों एवं शहरों पर गहराती गंदी हवा और हर वर्ष बढ़ते बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप इस बात के साक्षी हैं कि हमने अपने धरती और अपने पर्यावरण की ठीक ठाक देखभाल नहीं की। अब इससे होने वाले संकटों का प्रभाव बिना किसी भेदभाव के समस्त विश्व, वनस्पति जगत और प्राणी मात्र पर समान रूप से पड़ रहा है। आज पूरे विश्व में लोग अधिक सुखमय जीवन की परिकल्पना करते हैं। सुख की इसी असीम चाह का भार प्रकृति पर पड़ता है। विश्व में बढ़ती जनसंख्या, विकसित होने वाली नई तकनीकों तथा आर्थिक विकास ने प्रकृति के शोषण को निरंतर बढ़ावा दिया है। पर्यावरण विघटन की समस्या आज समूचे विश्व के सामने प्रमुख चुनौती है, जिसका सामना सरकारों तथा जागरूक जनमत द्वारा किया जाना है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन के तीनों बुनियादी आधार वायु, जल एवं मृदा आज खतरे में है। सभ्यता के विकास के शिखर पर बैठे मानव के जीवन में इन तीनों प्रकृति प्रदत्त उपहारों का संकट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण न केवल महानगरों में ही बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी शुद्ध प्राणवायु मिलना दुभर हो गया है, क्योंकि धरती के फेफड़े वन समाप्त होते जा रहे हैं। वृक्षों के अभाव में प्राणवायु की शुद्धता और गुणवत्ता दोनों ही घटती जा रही हैं। बड़े शहरों में तो वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को श्वास संबंधी बीमारियां आम बात हो गई हैं। वायु प्रदूषण के लिए वाहन भी कम उत्तरदायी नहीं है। बसों, कारों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, स्कूटर, रेलों आदि सभी में पेट्रोल अथवा डीजल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनसे भारी मात्रा में दम घोटने वाला काला धुआं निकलता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। डीजल वाहनों से जो धुआं निकलता है उनमें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा सूक्ष्म कार्बन युक्त कणिकाएं मौजूद रहती हैं। पेट्रोल चालित वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड वो लेड मौजूद होते हैं। लेड एक वायु प्रदूषक पदार्थ है। डीजल एवं पेट्रोल चालित वाहनों में होने वाले दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, जो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन से मिलकर स्मॉग को जन्म देते हैं। यह रासायनिक कोहरा मानव के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे लिए हवा के बाद जरूरी है जल। इन दिनों जल संकट बहुआयामी है। इसके साथ ही इसकी शुद्धता और उपलब्धता दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हमारे देश में सतह के जल का 80% भाग बुरी तरह से प्रदूषित है और भूजल का स्तर निरंतर नीचे चला जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण ने हमारी 12 मासी नदियों के जीवन में जहर घोल दिया है। हालात यह हो गई है कि मुक्तिदायिनी गंगा की मुक्ति के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। गंगा ही क्यों, किसी भी नदी की हालत आज ठीक नहीं कही जा सकती। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय इस प्रकार हैं: यूज एंड थ्रो की दुनिया को छोड़ पुनः सहेजने वाली सभ्यता को अपनाया जाए। अपने भवन में चाहे व्यक्तिगत हो या सरकारी कार्यालय हो, वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रयोग में लाएं। जैविक खाद्य अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपने घर, फ्लैट या सोसाइटी में हर साल एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करके उसे एक पूर्ण वृक्ष बनाएं, ताकि वह विषैली गैसों को सोखने में मदद कर सके। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। सड़क पर कूड़ा मत फेंकें। नदी, तालाब जैसे जल स्रोतों के पास कूड़ा मत डालें। यह कूड़ा नदी में जाकर पानी को गंदा करता है। कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। पॉलीथीन वो प्लास्टिक को ना कहें। छात्र उत्तर पुस्तिका, रजिस्टर या कॉपी के खाली पन्नों को व्यर्थ ना फेंकें, बल्कि उन्हें कच्चे कार्य में उपयोग करें। पेपर दोनों तरफ इस्तेमाल करें। जितना खाएं उतना ही लें। दिन में सूरज की रोशनी से काम चलाएं। काम नहीं लिए जाने की स्थिति में बिजली से चलने वाले उपकरणों के स्विच बंद रखें। CFL का उपयोग कर ऊर्जा बचाएं। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम करने के लिए सौर ऊर्जा का अधिकाधिक इस्तेमाल करें। सोलर कुकर का इस्तेमाल बढ़ाएं तथा स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। पानी का प्रयोग करने के बाद नल को तुरंत बंद कर दें। ब्रश एवं शेव करते समय नल खुला न छोड़ें। कपड़े धोने के बाद साबुन वाले पानी से फर्श की सफाई करें। फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि का इस्तेमाल पावर सेविंग मोड पर करें। जितना हो सके ठंडे पानी से कपड़े धोएं। ड्रायर का प्रयोग न करें। जितना हो सके पैदल चलें। कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। कार पूल करें या सार्वजनिक वाहन प्रणाली का प्रयोग करें। पैकिंग वाली चीजों को कम से कम काम में लें। औद्योगिक कचरे में 1/3 अंश इन्हीं का होता है। घर में चीजों का भंडारण दुरुस्त तरीके से हो ताकि उन्हें व्यर्थ होने से बचाया जा सके। डिस्पोजेबल वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के गिलास, पानी की छोटी छोटी बोतल और प्लेट के प्रयोग से परहेज करें। विशिष्ट अवसरों पर एक पौधा अनिवार्यतः उपहार स्वरूप दें। कूड़ा करकट, सूखे पत्ते, फसलों के अवशेष और अपशिष्ट न जलाएं। इससे पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव मर जाते हैं और वायु प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। 3 R, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज का हमेशा ध्यान रखें। इस तरह वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण महासंरक्षण है और हम सभी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।
1: श्रोता साथी, आप सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण संरक्षण महासंरक्षण। ये विषय था आज की वार्ता का। वार्ताकार थी ममता सिंह। हम आपको बता दें, इस वार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे शराबी फिल्म के गीत के साथ किशोर कुमार को सुनेंगे श्रोताओं। हम इस गीत में शब्द रचना आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन बप्पी लाहिड़ी का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोता साथी, भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के सशक्तिकरण और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा संचालित किया जाता है। ये योजना संबंधित वर्ग की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए संचालित की जाती है। श्रोताओं, इस योजनाओं के पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। इन्हीं तमाम बातचीत के साथ श्रोताओं, कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।

0: has opened up new possibilities.
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
0: Secretary and I therefore welcomed the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. the passage of the Shanti Act.

0: आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है झारखंड के लोकगीत।
1: झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टुडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं खड़िया लोकगीत और इसके कलाकार हैं बुधराम खड़िया। तो आइए सुनते हैं ये पहली प्रस्तुति इनकी।

0: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे बुधराम खड़िया की आवाज में खड़िया लोकगीत। तो इसी के साथ ही हमारा ये झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टुडू को आज्ञा दीजिए, जोहार।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
2: वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में है बहुत कुछ, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा में बातें करेंगे पशुधन कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की जानकारी। इसके बाद बातें होंगी मई माह में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल कैसे की जाए, इस पर महत्वपूर्ण बातें करेंगे। फिर और एक चर्चा में आपको हम जानकारी देंगे भीड़ भाड़ नहीं सही प्रबंधन ही फसल पोल्ट्री पालन की पहचान। तो श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में इतना कुछ, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा, जिसमें हम बातें करेंगे पशुधन कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के बारे में। किसान भाइयों, पशुधन कल्याण और पशुपालकों की आय वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रमुख योजनाएं चला रही हैं। केंद्र की योजनाओं में राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसर संरचना विकास निधि ऋण और सब्सिडी, साथ ही पशुधन बीमा योजना शामिल है। वहीं राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर सब्सिडी युक्त पशु वितरण और चिकित्सा योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें पहला है केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसका उद्देश्य उद्यमिता विकास, नस्ल सुधार और चारे की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके तहत बकरी, भेड़, सुकर और मुर्गी पालन के लिए 50% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, ये अगला है। पशुओं को घातक बीमारियां जैसे कि खुरपका, मुंहपका से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण और पशु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद है पशुधन बीमा योजना। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए बीमा किया जाता है, जिसमें प्रीमियम पर 50% तक का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। इसके तहत डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण पर 3% की ब्याज छूट और 25% तक सब्सिडी दी जाती है। अगला है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। इसके तहत किसानों को बिना किसी गारंटी के सस्ती दर पर कार्यशील पूंजी मुहैया कराई जाती है। इसके बाद आता है राज्य प्रायोजित योजनाएं। चूंकि आप झारखंड के जमशेदपुर झारखंड क्षेत्र में हैं, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत अनुदान सब्सिडी, इसके तहत दुधारू गायों की खरीद, पशु शेड के निर्माण और उपकरणों के लिए 50% तक का अनुदान मिलता है। इसमें विशेष लाभ में आप बकरी, सुकर और मुर्गी बतख पालन के लिए लक्षित वर्गों जैसे कि विधवा, दिव्यांग और गरीब परिवारों को 100% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्य पशु चिकित्सा सेवाएं, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पशु चिकित्सा पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट भी संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपने निकटतम जिला पशुपालन कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। श्रोता मित्रों, अब आइए बातें करते हैं मई माह में उगाई जाने वाली सब्जियों की देखभाल कैसे की जाए। किसान भाइयों, मई का महीना भीषण गर्मी और मानसून की शुरुआत के बीच का संक्रमण काल होता है। इस समय भिंडी, लौकी, खीरा, करेला, हरी मिर्च और बैंगन जैसी गर्मी और बारिश सहन करने वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मई के महीने में सब्जियों के बेहतर उत्पादन के लिए बुआई और देखभाल का तरीका नीचे आप जानेंगे। उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां जैसे भिंडी, मई में इसकी बुआई करने से या जून में अगस्त सितंबर तक बम्पर पैदावार देती है। इसके अलावा लौकी और खीरा, ये कम समय में लगभग 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है और गर्मियों में इनकी भारी मांग होती है। इसके अलावा आता है करेला, मई में बोने पर या बरसात तक अच्छा मुनाफा देता है। इसके अलावा हरी मिर्च और बैगन, इनकी मई में नर्सरी डाली जाती है और जून में रोपाई की जाती है। मई में फसलों की देखभाल कैसे करें, आइए बातें करते हैं। मई की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं, लू से सब्जियों को बचाना सबसे जरूरी होता है। सिंचाई, चूंकि मई में तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए पौधों को नमी की आवश्यकता होती है। हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों की जड़ों के आसपास पुआल या मल्चिंग सीट लगाएं। इसके अलावा मचान विधि में करेला, लौकी और खीरा जैसे बेल वाली सब्जियों को जमीन पर फैलाने के बजाय बांस या तारों की मदद से ऊपर मचान पर चढ़ाएं। इससे फंगस नहीं लगता और अच्छे फसल भी आते हैं। अगला होता है खाद का प्रयोग। अच्छी वृद्धि के लिए समय समय पर जैविक खाद जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। कीट नियंत्रण के में आप गर्मी में महू और सफेद मक्खी का प्रयोग हो सकता है। बचाव के लिए समय पर नीम के तेल का छिड़काव जरूर करें।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी,
2: हाँ,
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना।
0: किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम कृषि जगत में। आइए अभी आपको हम जानकारी देते हैं। भीड़ भाड़ नहीं, सही प्रबंधन ही सफल पोल्ट्री का पहचान है। श्रोताओं, यह बिल्कुल सही कहावत है कि पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को सीमित जगह में जरूरत से ज्यादा भीड़ भाड़ में रखना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सही प्रबंधन से मुर्गियों में तनाव कम होता है, बीमारियों का खतरा भी घटता है और आय में वृद्धि होती है। सफल पोल्ट्री पालन के लिए आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहला है स्थान का प्रबंधन, जैसे कि भीड़भाड़ से बचे, मुर्गियों को पर्याप्त जगह दें, प्रति वर्ग फीट मुर्गियों की संख्या सीमित रखें ताकि उन्हें दाना पानी, खाने और घूमने में परेशानी ना हो। अगला है स्ट्रेस कम करें। कम भीड़ होने से पक्षी तनाव मुक्त रहते हैं और अंडों या मांस का उत्पादन बेहतर होता है। अगला है हवा और तापमान का नियंत्रण। शुद्ध हवा का संचार, शेड में हवा की आवाजाही अच्छी होनी चाहिए। दूषित हवा और गैसों जैसे अमोनिया से बचाव के लिए वेंटिलेशन जरूर लगाएं। इसके बाद आता है तापमान। मौसम के अनुसार शेड का तापमान बनाए रखें। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए पर्दे जरूर लगाएं। इसके बाद आता है बिछावन। सूखा रखे फर्श पर लकड़ी का बुरादा या चावल भी जरूर रखें। श्रोताओं, नमी से बचाव के लिए लीटर में नमी नहीं होनी चाहिए। गीला होने पर अमोनिया गैस बनती है और बीमारियां फैलती है। इसके बाद आता है दाना और पानी का प्रबंधन। दाने और पानी के बर्तन हमेशा साफ होने चाहिए। गंदे बर्तनों से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसके बाद आप पोषण पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसके तहत उम्र और आवश्यकता के अनुसार संतुलित और गुणवत्तापूर्ण आहार प्रबंध करें। इसके बाद आता है टीकाकरण और जैव सुरक्षा टीकाकरण। इसके तहत बीमारियों से बचाने के लिए समय पर सभी जरूरी टीके लगवाएं और साफ सफाई में भी बाहरी लोगों और जानवरों का फार्म में प्रवेश को रोक दें। सेट को नियमित रूप से कीटाणु रहित रखें।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी।

0: करवाते हैं एक सफल किसान से जो कि हैं खिरवाल हांसदा जी। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: श्रोता मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जो कि पटमदा क्षेत्र में ड्रैगन की खेती कर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और इसी तरह इन्होंने खेती में बहुत अच्छा अपना नाम किया है, साथ ही इससे अच्छी आमदनी और इससे काफी लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में खेरवाड़ हांसदा जी का। तो खेरवाड़ हांसदा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार।
1: खेरवाड़ जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको ये ड्रैगन की जो खेती है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे सोचा कि इसकी खेती करें और इससे हम जो भी है अपना इनकम का एक सोर्स पैदा करें।
2: देखिए, हमारे क्षेत्र यहाँ कृषि पर ज़्यादा निर्भर करता है जी। और यहाँ हम लोग पहले से ही हम लोग खेती बाड़ी में निर्भर करते हैं और पहले हम लोग का खेती होता था, जैसे कि धान का तो होता ही है, उसके बाद सब्जी वगैरह का खेती करते हैं हम लोग
1: जी।
2: तो सब्जी की खेती करते करते देखें कि उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है और वो हर एक साल बार बार लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया में देखा कि ड्रैगन फ्रूट का भी ऐसा खेती होता है, तो मैंने उसमें देखा कि वो एक बार लगाने के बाद कम से कम आपका 15-20 साल लगाना नहीं पड़ता, एक ही बार में वो हो जाता है।
1: अच्छा।
2: इसीलिए मैं सोशल मीडिया से ही उसको लगाने का सोचा।
1: तो ये ड्रैगन की खेती के लिए आपने बीज कहाँ से लाए?
2: ये बीज मैंने बंगाल के मिदनापुर से लाया है।
1: अच्छा, यानी इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, इसे कैसे मैंने इसको उपजाना है, कैसे इसमें पानी लगेगा और कैसे इसका फल को हम तोड़ के बाजार तक पहुंचाएंगे, ये सारी जानकारी आपने यानी सोशल मीडिया से प्राप्त की?
2: हाँ, सोशल मीडिया से प्राप्त किया। उसके बाद मैंने इसके पहले लगाने के पहले एक साल तक मैंने यहाँ वहाँ हर एक जगह 4-5 जगह दूसरे के फार्म में विजिट किया है।
1: अच्छा।
2: हाँ, विजिट किया, दूसरे जो पहले से जो किसान खेती करते हैं उन लोगों से मिला, उन लोग से जानकारी लिया
1: जी।
2: हाँ, उसके बाद मैंने इसे शुरुआत किया है।
1: तो ये खेती आप कब से, इसकी शुरुआत यानी कि आपने कब से की?
2: इसकी शुरुआत मैंने 2023 में किया है।
1: अच्छा, और अभी भी कर रहे हैं?
2: हाँ।
1: तो ये इसका जो जलवायु है ये क्या है, ये यहाँ की जलवायु से ये मैंने ये मेच खाता है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं होती है?
2: ये तो देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो है एक एक्टस प्रजाति का है, एक्चुअली ये तो हीट मतलब ये सहन कर सकता है, टेम्परेचर सहन कर सकता है, फिर भी हमारे हिसाब से यहाँ ज़्यादा हीट हो जा रहा है आजकल, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये मैक्सिमम इसके लिए कम से कम 40 डिग्री तक नॉर्मल है।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ।
1: तो ये फल का, इसका सीजन कब होता है फल देने का?
2: ये फल देने का सीजन है, एक्चुअली इसका जो नेचुरल सीजन है ये अभी मई जून से स्टार्ट होकर नवंबर तक फल आता है
1: जी। आपने लगभग कितना एकड़ में इसका खेती किया है?
2: लगभग मैंने 1 एकड़ में खेती किया है।
1: अच्छा, तो 1 एकड़ की खेती में आपको कितनी फल प्राप्त हो जाते हैं?
2: ये शुरुआत में तो ज़्यादा होता नहीं है, शुरुआत में आपका एक एक पोल से 3-4 किलो करके फल आता है।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: यानी कि इसे क्विंटल में बोला जाए तो कितना, 1 एकड़ में आप कितने क्विंटल उपजाते हैं?
2: 1 एकड़ में शुरुआत में पहले साल तो आपका जैसे 2023 में लगाए हैं तो आपका पहला प्रोडक्शन आएगा 1-1.5 साल बाद आएगा।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो उसमें आपको लगभग 5.5-6 क्विंटल आ जाता है।
1: अच्छा, तो इसमें बाजार की हम बात करें तो आप इसका तब कहाँ, कौन से बाजार में इसको बेचते हैं या फिर महाजन आके ले जाते हैं?
2: ये हम लोग का तो जमशेदपुर नज़दीक है, जमशेदपुर में बेचते हैं या फिर लोकल मार्केट में बिक जाता है।
1: अच्छा।
2: और आजकल तो सोशल मीडिया का ये है तो लोग घर से भी ले जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, यानी कि
2: फार्म आते हैं यहाँ, मतलब बेचने कोई प्रॉब्लम नहीं है
1: जी। जी अच्छा, खेरवान जी आपने कहा कि ड्रैगन के अलावा भी आप और भी किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं, तो और क्या क्या खेती कर रहे हैं इसके साथ साथ?
2: अभी मेरे पास अभी बैंगन है, भिंडी है
1: जी।
2: हाँ।
1: तो ये आप जो भी खेती बाड़ी करते हैं तो अगल बगल के लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा एक नया खेती जो इस क्षेत्र में कोई नहीं करता वो आप कर रहे हैं, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे आपने लिया, कैसे सोच लिया?
2: नहीं देखिए, तो ये तो मैंने सोचा कि अगर कुछ करना है तो अलग ही करना है।
1: अच्छा।
2: और ये हमारे एरिया में तो ड्रैगन फ्रूट का खेती कहीं नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही शुरुआत करके देखता हूँ, ट्रायल करके देखते हैं।
1: अच्छा।
2: होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो चलिए ट्रायल करके तो देखते हैं कम से कम
1: जी। शुरुआती दौर में आपको लगभग कितना पूंजी लगा होगा इसमें?

0: ये पूंजी ज्यादा ही लगता है इसमें, ड्रैगन फ्रूट में ये तो एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। जैसे कि दूसरे सब्जी में वो हर एक साल आपको, जैसे कि टमाटर हुआ या फिर गोभी हुआ जो भी, वो एक सीजन का सब्जी, एक बार आप लगाए फिर एक बार फल तोड़े फिर खत्म हो जाता है। और ये एक बार पूंजी लगाने के बाद आपका 15-20 साल तक अगर ठीक से देखभाल करेंगे तो रह जाता है।
1: क्या बात है। तो खेरवार जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आशा है कि आपके इन बातों से हमारे किसान भाई प्रभावित होंगे और वो भी ड्रैगन की खेती को लेके वो भी सचेत हो जाएंगे और साथ ही ये ड्रैगन की खेती करना चाहेंगे। तो अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी होगी तो आपसे कोई भी किसान संपर्क करता है, आप उन्हें जानकारी देते होंगे?
0: हाँ, जानकारी देते हैं। तो इस साल तो और मैं हमसे मिले बहुत सारे किसान और मेरे देखा देखी में हमसे प्रेरणा लेकर और हमारे जमशेदपुर एरिया में कम से कम 4-5 लोग खेती शुरू किए हैं अभी।
1: क्या बात है। तो खेरवाल हंसदा जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी और आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।
1: जोहार।
2: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे खेरवाल हंसदा जी को। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनाते हैं संताली लोकगीत। संताल स्त्रियों में कृषि कार्य करने की बड़ी उत्सुकता होती है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कृषि कार्य संपन्न करने हेतु लोगों को बुलाने के लिए पति से कहती है, जो उपयुक्त गीत में दर्शाया गया है। तो आइए श्रोता मित्रों, अगली प्रस्तुति सुनते हैं स्टीफन सोरेन एवं साथी की ही आवाज में ये संताली लांगड़े गीत। इस गीत में पत्नी पति से कहती है कि मुर्गा ने बाग दे दिया है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, इसलिए हे पतिदेव अपने पीतल के हुक्के को पकड़ो और गली के काम करने वाले स्त्रियों को ढूंढ के लाओ।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे स्टीफन सोरेन व साथियों की आवाज़ में संताली लोकगीत। तो चलिए हम कार्यक्रम में चलते चलते आपको और एक जानकारी देते हैं। लू के प्रकोप से बचाव करें कैसे। लू या हीट वेव से बचाव के लिए खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। तेज धूप से बाहर जाने से बचें, विशेषकर दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक, और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। लू से बचाव के प्रमुख उपाय जैसे कि हाइड्रेशन, प्यास ना लगने पर भी हर 20 से 30 मिनट में पर्याप्त पानी पीते रहे। इसके अलावा ORS, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल, छाछ या लस्सी का सेवन करते रहे। खान पान बाहर जाने से पहले खाली पेट ना रहें। ताजे फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा खाएं। चाय, कॉफ़ी और शराब के सेवन से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। धूप से बचाव के लिए आप दोपहर 11 से 4 बजे के बीच घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। यदि बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तो छाता का उपयोग करें और सिर, चेहरे व गर्दन को गीले सूते, गमछे या टोपी से अच्छी तरह ढक कर निकले। हमेशा हल्के रंग के, ढीले और पूरे शरीर को ढकने वाली सूती कपड़े पहने। सिंथेटिक कपड़ों से परहेज करें। घर को ठंडा रखें। दोपहर के समय घर की खिड़कियां और दरवाजे पर पर्दे लगाएं। इसके अलावा व्यक्ति को यदि लू लग गया तो तुरंत धूप से हटाकर किसी ठंडी जगह या पंखे की हवा में टिका दें। उनके शरीर से तंग कपड़े ढीले करें, तापमान कम करें। मरीज के शरीर को ठंडे गीले कपड़े से पोछे और ठंडा पानी डालें। गर्दन, बगल और जांघों पर ठंडे पानी या बर्फ की पट्टी रखें। तो श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। अंत में सभी को मेरा प्यार भरा जोहार।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे ठीक शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्री
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हो गया इंतजाम।
8: किसका? गुड्डी की फीस का।
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
8: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
9: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
11: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
10: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
11: तो फिर सही नंबर,
10: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
11: आपने तो बचा लिया दीदी।
10: काम से नहीं।
9: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
12: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर कल से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
14: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को निर्धारित तिथि पर अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने को कहा है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
13: विपक्षी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रांची में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति परंपरा के हिस्से हैं, इसलिए समाज को बांटने की राजनीति बंद होनी चाहिए।
15: क्योंकि हर कोई जानता है सरना सनातन हिंदू ये तो पैदाइश ही होते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अगर वास्तव में सरना समाज की हितैषी है तो आप याद करिए भारत की पार्लियामेंट ने 1996 में ऐसा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है मूल, जब उस कानून को देखेंगे धार्मिक जो प्रथा है परंपरा को मानने वाले उसको ही उन्होंने हटा दिया है।
13: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर खूंटी में मोहम्मद जावेद हुसैन ने उपायुक्त के रूप में योगदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। उधर देवघर में सौरभ कुमार भुवानिया नए उपायुक्त होंगे। हजारीबाग के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो दिवसीय प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की शुरुआत की। मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री अमरदीप यादव ने कहा कि जनसंघ से शुरू हुई यह यात्रा त्याग और संघर्षों की गाथा है।
16: भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के चलती है और अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है कि हम कैसे अपने देश के लिए काम करें और कैसे सब हम लोग को जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सिद्धांत है उसमें कैसे चल के हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, उसी के लिए आज 12 विषयों पर हम लोग का चर्चा होना है।
13: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्वांटम AI नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। सरकार ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है और वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि यह सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने आज जिले के नारायणपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध पंजियों का संधारण, क्षेत्र के फरार चल रहे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, मामलों का त्वरित निष्पादन सहित विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए।
17: निरीक्षण पुलिस अधीक्षक के द्वारा वर्ष में एक बार किए जाने का प्रोग्राम, मुख्य रूप से इसमें थाने के जो रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान समस्या है या अपराध कर्मी है उनके बारे में थाना के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही, उस संबंध में एक निरीक्षण होता है।
13: दुमका जिले में पर्यावरण संकट और लगातार घटते वन क्षेत्र को देखते हुए काठीकुंड प्रखंड की बीछी पहाड़ी पंचायत में वन विभाग की ओर से जंगल बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान निझौर गांव की किशोरियों ने पेड़ों पर राखी बांधते हुए संकल्प लिया कि वे जंगल और पेड़ों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगी। कार्यक्रम का नेतृत्व लोक कल्याण सेवा केंद्र ने किया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बाबा नगरी देवघर पहुंचे। बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा की और राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। धनबाद के झरिया में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने डिगवाडी बिजली स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची और विभागीय अधिकारियों को जल्द बिजली बहाल करने का निर्देश दिया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 25 और 26 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है तथा लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचने की अपील की है। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हो रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन था। पेश है एक रिपोर्ट।
14: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेली जा रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कई नए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जबकि अनुभवी एथलीटों ने भी दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने स्वर्ण पदक जीतते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल किया। महिला 100 मीटर हर्डल्स और पुरुष 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें कई धावकों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में तेजस अशोक शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला और पुरुष 800 मीटर दौड़ की हीट्स में भी खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में जुटे हैं। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन को राज्य के लिए गौरव की बात बताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
13: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा, पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: दीदी नौकरी लग गई।
6: अरे वाह, बधाई हो।
7: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
7: अच्छा।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
11: एक ट्रेड में सिक्सर।
12: ए अक्का
10: प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर,
11: मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
14: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चतरा जिले को रेल सेवा से जोड़ने के लिए रेलवे मंत्रालय ने विशेष अधिसूचना जारी की है। बिहार के गया जी के परैया स्टेशन से चतरा तक 75 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन पे स्पेशल उसके स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए, जितने भी अड़चने हो फॉरेस्ट का एनओसी का हो या जमीन का फॉरेस्ट को पैसा देना हो, जितनी भी चीजें हो उनसे तुरंत प्रक्रिया जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
1: चतरा के उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKKY के अंतर्गत DMFT निधि से योजनाओं का चयन करने के लिए जिले के 154 पंचायतों में 21 से 23 मई तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आधारभूत संरचना के चयन को प्राथमिकता दी गई। इधर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना चतरा जिले के किसानों को खेती और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है। चतरा के सिमरिया अनुमंडल के किसान महेंद्र कुमार और गिद्धौर प्रखंड के प्रगतिशील किसान मुकेश दांगी ने पीएम कुसुम योजना के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि
3: पीएम कुसुम योजना से हमें बहुत लाभ मिला है और हम किसानों को प्रेरित करना चाहूँगा कि पीएम कुसुम योजना का लाभ लें। और मेरा जो भी कांटेक्ट में है उन लोग को तो हम फॉर्म भरवा रहे हैं और दिला भी रहे हैं और हम अपना टी भी लगा रहे हैं और इधर पॉली हाउस भी मेरा है।
4: मेरा नाम मुकेश कुमार दांगी हुआ। मुझे पीएम कुसुम के द्वारा सोलर पंप मिला जिससे मैं 5 एकड़ आम बागवानी लगाए हैं, इसका आम का पटवन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार द्वारा जो मिला है इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है।
1: पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने में चतरा जिले के किसान सबसे आगे रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि चतरा जिले ने केवल लक्ष्य ही हासिल नहीं किया है बल्कि हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को योजना के जरिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है।
5: हमारे चतरा जिला के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के इच्छुक हैं और कृषि विभाग से समय समय पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने

0: सरकारी बेटियां बेटियां और कृषक पाठशाला के माध्यम से दी जा रही है। और पीएम कुसुम योजना अंतर्गत हमारे चतरा के किसानों ने बढ़ चढ़ कर रुचि दिखाई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारे चतरा जिला के किसान पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हैं एवं हरित सौर ऊर्जा अपनाने के इच्छुक हैं।
1: राज्य के अधिकांश जिलों की तरह चतरा में भी भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित है। पिछले दो दिनों में जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:18 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण, लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
0: संदेशों के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।
5: कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार।

स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का। दोस्तों, पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें इस बारे में सोचने और समझने का मौका देता है। लेकिन पर्यावरण के बारे में एक दिन ही नहीं बल्कि रोज सोचे जाने की जरूरत है, क्योंकि हालात बेहद खराब हैं। देश में किसान ही है जो असामान्य बारिश से लेकर सूखे तक मौसम के तमाम उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा पीड़ित है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब बाढ़ के समय सूखा और सूखे में बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। ये निराशाओं का दौर है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे मान्यता दें ताकि तेजी से बेहतर समाधान पेश किया जा सके। मौसम की सुर्खियां अक्सर खबरों में गुम हो जाती है। मौसम की खबरों से वंचित रहने के तीन कारण हैं। पहला ये कि बदलाव को अब तक मान्यता नहीं मिली है।

0: दूसरा, हमारे पास उन आवाजों को सुनने का कोई माध्यम नहीं है जो विज्ञान द्वारा स्थापित नहीं है। इस वजह से परिवर्तन के सबसे बड़े पीड़ित किसानों की अनदेखी हो रही है। ये भी सच है कि जलवायु परिवर्तन जैसे शब्दों से वे अनजान हैं। साधारण शब्दों में कहें तो उनके लिए मौसम बदल रहा है और इनकी मार उन पर पड़ रही है। तीसरा है, मौसम की सुर्खियां अक्सर इसलिए भी सुनाई नहीं देती क्योंकि इसका शोर तभी मचता है जब मध्यम वर्ग और शहर इससे प्रभावित होते हैं। खबरों में आने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने जरूरी होते हैं। इस तरह के घटनाक्रम हमारी रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन ये खबरें दूरदराज के क्षेत्रों और लोगों से जुड़ी होती है, इसलिए ये हमारी खबर नहीं बन पाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, खराब मौसम की वजह से कई फसल तबाह हो जाते हैं। ये खराब मौसम, अत्यधिक बारिश, बहुत कम बारिश, बहुत ठंड, बहुत गर्मी, अचानक ओलावृष्टि के रूप में आता है और जानलेवा साबित होता है। इस तरह की घटनाएं अनियमित नहीं बल्कि अब ये नियमित हो चुकी हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमें इस बदलाव को मान्यता देने को मजबूर करते हैं। ये कहना गलत होगा कि शहरी भारत मौसम के बदलाव या प्रदूषण से बराबर प्रभावित नहीं है। इस मामले में ग्रामीण और शहरों में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि आवास, जल, सीवेज, कचरा और प्रदूषण जैसे शहरी संकट ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें पैदा करेंगे। ऐसे में मौसम की मार से परेशान ग्रामीण रोजगार के लिए शहरों का रुख करेंगे। भारत की शहरी आबादी पिछले दशकों में बेतहाशा बढ़ी है। दोस्तों, मौसम परिवर्तन के प्रभाव के लिए कहीं न कहीं हमारा प्रबंधन दोषपूर्ण है। हम बाढ़ प्रभावित जमीनों का निर्माण कर रहे हैं, अपने जल स्रोत नष्ट कर रहे हैं और जल मार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। खराब मौसम के बीच इन हालातों ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी है। समय के साथ जलवायु परिवर्तन में तेजी ही आएगी, मौसम और बारिश की अनिश्चितताएं और बढ़ेंगी, नतीजा बर्बादियों का दायरा भी बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन खास रूप से मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि वनस्पतियों और पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चूंकि जलवायु के मामूली परिवर्तन भी इनके आवास और खाद्य उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा वन्य जीवों, पशुधन, फसलों, वनों और जलीय जीवों से संबंधित रोगों से भी है। फफूंदी रोग जैसे सोयाबीन रस्ट गर्मी और नमी के कारण अधिक तेजी से फैलेगा। मौसम के बदलते प्रतिमान कई देशों में पानी की उपलब्धता को खतरा पैदा कर रहे हैं। जहां भूजल का या तो अत्यधिक दोहन कर लिया गया है या जहां भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर ये मानना एकदम सही है कि विश्व में तेजी से बढ़ रहा तापमान रोग पैदा करने वाले जीवों और खाद्यान्न वनस्पति नाशियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। यदि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में वृद्धि उपलब्ध खाद्यान्न को नष्ट करने में सहायक होती है तो मानव सभ्यता के लिए इसके परिणाम ज्यादा नकारात्मक होंगे। अभी भी बड़ी संख्या में लोग खाद्यान्न और पोषण के अभाव में जी रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों, जरूरत है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता की। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है पर्यावरण शिक्षा और शिक्षकों की इसमें भागीदारी। ये किस तरह संभव हो पाएगा, इस पर विस्तार से जानकारी दे रही है नीलम सिन्हा।
1: पर्यावरण शिक्षा यह सिखाने के सुनियोजित प्रयास की ओर संकेत करती है कि किस प्रकार मनुष्य चिरस्थायी अस्तित्व के लिए स्वाभाविक वातावरण की क्रियाओं और विशेषता अपने व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। पर्यावरण शिक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण और इससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में लोगों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाती है। पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु है। पर्यावरण शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इसका प्रयोग जनता और बच्चों को शिक्षित करने के समस्त प्रयासों के लिए किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के संबंध में चिंता की प्रवृत्ति और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है। वर्तमान कालखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चिंताकारक विषय पर्यावरण है। पर्यावरण का संरक्षण एवं स्वस्थ विकास एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसका मूल कारण पर्यावरण के प्रति

0: जागरूकता का घोर अभाव है। ऐसे में शिक्षक तथा बच्चे मिलकर समाज को इस दिशा में प्रेरित एवं उद्वेलित करने की पहल कर सकते हैं। वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। प्रकृति में इन सब की मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से है। आज के दौर में पर्यावरण संबंधित परेशानी एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हमें हमारे पर्यावरण को स्वस्थ और प्रदूषण से दूर रखने के लिए अपने स्वार्थ और गलतियों को सुधारना होगा। वायु और जल प्रदूषण विभिन्न बीमारियों और विकारों द्वारा हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। आजकल हम किसी भी चीज को सेहतमंद नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम खाते हैं वो पहले से ही कृत्रिम उर्वरकों के दुष्प्रभाव से प्रभावित हो चुका है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। यही कारण है हम में से कोई भी स्वस्थ और खुश रहने के बावजूद कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण और जीवित चीजों के बीच नियमित रूप से विभिन्न चक्र घटित होते रहते हैं। किसी भी कारण से ये चक्र बिगड़ जाते हैं तो प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि अंततः मानव जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में माना जाता है, इसलिए उनमें ब्रह्मांड के बारे में पता करने की उत्सुकता बहुत ज्यादा है, जो कि उन्हें तकनीकी उन्नति की दिशा में ले जाता है। शिक्षक को समाज का निर्माता एवं सूचना का वाहक कहा जाता है। शिक्षक का कार्य मात्र सूचनाएं देना नहीं बल्कि क्रियाओं को करके दिखाना है। कहा भी गया है, टीचर इज नॉट ओनली सोर्स बट ऑल्सो अ रिसोर्स। शिक्षक स्रोत ही नहीं साधन भी। वर्तमान में इस बात की महती आवश्यकता है कि शिक्षकों और छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति समाज में चेतना उत्पन्न की जाए। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन में शिक्षक के उत्तरदायित्व रोल मॉडल पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि सर्वप्रथम शिक्षक को प्रत्येक क्षेत्र रोल मॉडल बनना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के प्रति शिक्षक को स्वयं ही जागरूक हो वृक्ष लगाना, साफ सफाई, नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत करता हो। शिक्षक पर्यावरणीय तकनीकियों की जानकारी से छात्रों को अवगत कराए तथा उनमें प्रारंभ से ही नैतिक गुणों एवं अच्छी आदतों का विकास करे। सांस्कृतिक एवं सामुदायिक क्रम। शिक्षक समाज को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे NCC, NSS, स्काउट गाइड्स एवं अन्य सभी छात्रों के सहयोग से विद्यालय के अंदर एवं बाहर नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण गीत एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सहायता से जन आंदोलन ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषित स्थिति का छात्र प्राकृतिक वेशभूषा पहनकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं तथा छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा स्वयं समाज में वृक्षारोपण किया जा सकता है। जागरूकता रैली एवं बोलती दीवारें समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना फैलाने के लिए शहरों एवं विशेषकर गांवों की गलियों में जागरूकता रैली निकाल सकते हैं तथा दीवारों पर पर्यावरण से संबंधित स्लोगन, संरक्षण एवं प्रदूषण की स्थिति के वास्तविक चित्र स्वयं एवं छात्रों के लिख एवं बना सकते हैं। पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अकादमिक कार्य एवं सृजनात्मकता। शिक्षक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित लेख, वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार आदि आयोजित कर छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। लैब एवं प्रकोष्ठ। विभिन्न विषयों की भांति विद्यालय स्तर पर भी पर्यावरण शिक्षा के लिए एक लैब तथा प्रकोष्ठ की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए संवेदना एवं जिज्ञासा उत्पन्न होगी। प्रोजेक्ट कार्य क्रियात्मक शोध। शिक्षक पर्यावरण शिक्षा से संबंधित छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य तथा शीघ्र ही समाधित होने वाले समस्या हमारी समाधान भी हमारा के उद्देश्य पर आधारित क्रियात्मक शोध व्यक्तिगत या समूह दे सकते हैं तथा विद्यालय के अन्य सभी छात्रों का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारे पास समूह रूपी ऐसा पौधा तैयार होगा जो भविष्य में पर्यावरण के प्रति सचेत एवं संवेदनशील होगी। वर्तमान में समय आ गया है कि आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ावा दिया जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व का ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें यह बोध कराए कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। अपने आप को जानकर ही हमारी स्वयं पर्यावरण एवं राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक आंदोलन से ही पर्यावरण संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सभी धर्मों ने इसको प्राथमिकता दी है। छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जोश, जज्बा और जुनून विकसित करने एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आध्यात्मिक मंडल स्पिरिचुअल सर्किल का गठन किया जा सकता है। सिर्फ पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पूरे ब्रह्मांड में जीवन संभव, और पृथ्वी पर जीवन जारी रखने के लिए हमें हमारे पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अभियान है जो कई वर्षों से हर साल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा और सफाई के लिए जनता में जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। हम अपने पर्यावरण को बचाने के तरीके और सभी बुरी आदतें जो कि हमारे पर्यावरण को दिन ब दिन नुकसान पहुंचा रहा है के बारे में जानने के लिए हमें इस अभियान में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए। इस व्यस्त भीड़ और उन्नत जीवन में हमें दैनिक आधार पर छोटी छोटी बुरी आदतों का ख्याल रखना चाहिए। यह सत्य है कि हर किसी के छोटे से छोटे प्रयास से हम हमारे बिगड़ते पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम हमारे स्वार्थ के लिए और विनाशकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित रहे कि भविष्य में हमारे पर्यावरण को इससे कोई नुकसान न हो। हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि नई तकनीक हमारे पारिस्थितिक संतुलन को कभी गड़बड़ न करे। विश्व में यदि सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक स्वयं तथा छात्रों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति समाज को जागरूक कर जन चेतना फैलाए तो भविष्य की महाविभीषिका से आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि शिक्षक का एकल प्रयास ही भविष्य का सामूहिक प्रयास होगा। मिट्टी, पत्थर, चट्टानों और जल से बनी अपनी इस धरती को हम यदि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अनुभव करेंगे कि हमारी धरती एक सजीव तत्व है, जरूरत है तो इसे सहेज कर रखने की। स्वस्थ पर्यावरण प्रसन्न मन को आमंत्रण देता है और प्रसन्न मन कामयाबी की ओर रास्ता दिखाता है। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब न घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं।
1: पर्यावरण शिक्षा और शिक्षकों की भागीदारी, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीलम सिन्हा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त विभा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे मन फिल्म से लिए इस गाने में। गाने के बोल लिखे थे समीर ने और इसकी धुन बनाई थी संजीव दर्शन ने।
1: राख के ढेर में चलते।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

पूर्णिमा श्रेष्ठ और अजय देवगन की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे दिल जले फिल्म का ये गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर की और अनु मलिक का संगीत।

0: बाजी फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की मिली जुली आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी अनु मलिक ने। कार्यक्रम में वक्त हो रहा है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: नमस्कार।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सरगम फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
4: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
3: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इजराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के

0: कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीका

0: टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcome the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the

0: अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय Pandit Hara Shankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hara Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hara Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gut in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Raag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Raag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानत सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानत इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांतो दे रॉय।
0: इसी के साथ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
3: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong current. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over east Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
5: अभी आप सुन रहे थे समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात के 11:10:17 हो चुके हैं। आज का ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। कल इसी आवृत्ति पर हम 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे कल के प्रसारण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।